0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

ज्ञान ज्योति। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछितात। रहीम जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। अर्थात सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती है, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है और मनुष्य को सुख के समय ईश्वर का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों को सदैव आंकना चाहिए और मानव कल्याण के लिए अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए। ज्ञान ज्योति।

संकट हरने वाले गोप गोपेश्वर श्री कृष्ण भगवान को आओ हम सभी नमन करें।

रचाए, बहार रास को रास रचाए, हर गोपी संग शाम दिखाए।

दर्शन मोहे दे दो नंद लाला, भक्ति तोरी ऐसी करूं जैसी करती ब्रज की वाला। वंदना कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर।

भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए अब लगाते हैं हाजिरी माता रानी के दरबार में।

भक्ति गीतों के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का भाग 17।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालुजन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों की प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का भाग 17। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए आज हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। जी, कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर आप सुनते हैं रोजाना 7:05 पर। 7:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संसार। समाचार प्रभात का अंक आप सुनेंगे 8 बजे। मॉर्निंग न्यूज़ आप सुनते हैं रोजाना 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हिमाचल डायरी का अंक आप सुनते हैं रोजाना 8:30 पर। 8:35 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। नौ पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हमीरपुर लाइव फोन इन। नंबर हमारा रहेगा 22 31 22 और एरिया कोड है 01972। 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता। 10:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीत। 10:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से आप सुनेंगे 11 बजे। 11:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल मंडल। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुनते हैं रोजाना 12:30 पर। दोपहर समाचार का अंक आप सुनेंगे 2:15 पर। 2:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। 3 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 3:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। शाम 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 5:05 पर आप सुनेंगे पहाड़ी बोली में कार्यक्रम भजन संध्या। युवा साथी अपना कार्यक्रम युव मंच सुनते हैं रोजाना 5:30 पर। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 6:05 पर आप सुनेंगे सफर सुहाने गाने नए पुराने। 6:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम पाकिस्तान मैच का सीधा प्रसारण। 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:10 पर आप सुनेंगे

आकाशवाणी दिल्ली से आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम पाकिस्तान मैच का सीधा प्रसारण। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 8:00 आप सुनेंगे मैच का शेष भाग। 10:45 पर आप सुनेंगे रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो श्रोताओं, ये थे आज के हमारे रिले व प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और 7:00 हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं सम्प्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं सम्प्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमन्त्री स्वीय यात्राकाले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयम्। सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्व चन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थायाः अध्यक्षः डॉ वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चन्द्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थायाः अध्यक्षः डॉ वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यन्त शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थम् उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयानत्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीम् उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिमतापनप्रणाल्या युक्तम् एतत् यानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारम्भम् अकरोत्। एषा सेवा मण्डी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहर धारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं 7 पुरस्सरं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरर धर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरर धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
4: जल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। समय बता दें आपको, 7:05:42 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात। हमीरपुर कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो हमसफर बबीता। बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और देखिए ना, जून के इस गर्मी भरे महीने में पिछले दिनों की बारिश से मौसम में थोड़ी सी राहत आई है, मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया है, ठंडक आई है। और अगर इसको आज के विचार के साथ जोड़ें तो दोस्तों, जीवन का सफ़र भी यही कहता है कि जीवन में बदलाव आना ज़रूरी है। जीवन में हम सभी किसी न किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई ना कोई हमने ख्वाब देखा है, सपना देखा है और उसको हर दिन पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। रोज़ हम एक नए संकल्प के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। कभी सफलता एकदम हाथ लग जाती है तो कभी असफलता का भी सामना करना पड़ता है। पर दोस्तों, सफलता असफलता के इस ताने बाने में हमें हिम्मत, धैर्य और विश्वास का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खुद पर भरोसा ही हमें सपनों के करीब लेकर जाता है। हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास ही लक्ष्य के पास हमें लेकर जाते हैं। और दोस्तों, जब कोशिश रोज़ की आदत बन जाए तब जीत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। चलिए इसी विचार के साथ हम भी भेजते हैं आपके रेडियो सेट्स पर ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ

0: colleges.
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
2: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: जी सुप्रभात, हमीरपुर। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर। और अंतराल से पहले जो आपने गीत सुना उसे लिया गया था फिल्म खून भरी मांग से, और गायक कलाकार थे साधना सरगम और साथी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आज के इतिहास के बारे में। जी, रूस और पोलैंड के बीच पोलियानोव शांति समझौते पर आज ही के दिन 1634 में हस्ताक्षर किए गए थे। ड्यून्स की लड़ाई में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने 1658 में स्पेन को हराया था। अमेरिकी सेना की आज ही के दिन 1775 में स्थापना हुई थी। अमेरिकी कांग्रेस ने 1777 में बैठक के दौरान अपना आज ही के दिन झंडा चुना था। हवाई क्षेत्र 1900 में अमरीकी राष्ट्र का हिस्सा बना था। पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन आज ही के दिन 1901 में हुआ था। नॉर्वे में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार आज ही के दिन 1907 में मिला था। अमेरिकी राष्ट्रपति वॉरेन जी हार्डिंग ने आज ही के दिन 1922 में रेडियो पर अपना पहला भाषण दिया था। नाजियों ने 1940 विजित देश पोलैंड में आज ही के दिन यातना शिविर खोला था। वियतनाम राष्ट्र का गठन आज ही के दिन 1949 में हुआ था। डॉक्टर CV रमन को क्रेमलिन में लेनिन शांति पुरस्कार आज ही के दिन 1958 को प्रदान किया गया था। पेरिस में यूरोपियन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना आज ही के दिन 1962 में की गई थी। थाबो मबेकी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आज ही के दिन यानी कि 14 जून को 1999 में चुने गए थे। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने 2001 में संघाई सहयोग संगठन आज ही के दिन बनाया था। पंचशील सिद्धांत की 50वीं वर्षगांठ पर आज ही के दिन 2004 में बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था। और अब बात करते हैं आज के दिन जन्म हुए व्यक्तियों के बारे में। तो सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह का जन्म आज ही के दिन 1595 में हुआ था। वैज्ञानिक सतीश चंद्र दास गुप्ता का जन्म भी आज ही के दिन यानी कि 14 जून को 1880 में हुआ था। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हीरा भाई बादोडेकर का जन्म भी आज ही के दिन 1905 में हुआ था। भारतीय अभिनेता भारतीय भूषण का जन्म आज ही के दिन 1920 में हुआ था। भारतीय फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक के आसिफ का जन्म भी आज ही के दिन 14 जून 1922 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। टॉक शो से लेकर फिल्मों में काम करने वाली किरण खेर का जन्म भी आज ही के दिन 1955 में हुआ था। हिंदी फिल्म अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार शेखर सुमन का जन्म भी आज ही के दिन सन 1960 में हुआ था। और अब बात करते हैं आज के दिन निधन हुए व्यक्तियों के बारे में। तो प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक और इतिहासकार मैक्स वेबर का निधन आज ही के दिन 1920 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक कार्य मणिवक्कम श्रीनिवास कृष्णन का निधन आज ही के दिन 14 जून 1961 को हुआ था। और कुर्त वॉलहम का निधन 2007 में हुआ था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे महासचिव थे। तो श्रोताओं, ये थी आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हमने आपके साथ साझा की। अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
0: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
5: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
6: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: बड़ी बहू, ये तुम्हारे ना।
8: इतनी भी क्या जल्दी थी?
7: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
9: और ये
10: मेरी गुड़िया के नाम।
11: पर दादी,
7: हाँ,
11: आपके नाम?
12: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं, तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
7: शुभ शुभ बोलो। क्या?
12: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
13: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
14: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
13: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
15: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
13: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
15: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
13: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: जी, कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। G7 में वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को बुलंद करेगा भारत। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भारत केवल अपने हितों की बात नहीं करेगा, बल्कि वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और चिंताओं को भी मजबूती से उठाएगा। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले वो फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे, जहां द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना होने से पहले जारी बयान में मोदी जी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति उसके बढ़ते वैश्विक प्रोफाइल को दर्शाती है। लगातार 8वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया जाना देश की बढ़ती वैश्विक भूमिका और उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भरोसे का प्रतीक है। मोदी जी ने कहा कि फ्रांस भारत की रणनीतिक सोच में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने याद दिलाया कि इसी वर्ष फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया है। अगली खबर की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मंडी में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान सम्मेलन FRC 2026 का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। सम्मेलन में देश और विदेश से आए वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों ने रसायन विज्ञान के नए शोध तकनीकों और भविष्य की संभावनाओं पर विचार साझा किए। सम्मेलन की एक प्रमुख उपलब्धि यानी कि 140 से अधिक शोध पोस्टरों की प्रस्तुति रही। भारत, जापान, अमेरिका, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों के वैज्ञानिकों ने अपने शोध कार्य प्रस्तुत किए और अंतर्वैश्विक शोध सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान रासायनिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सूक्ष्मदर्शी तकनीक, इमेजिंग और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने वैज्ञानिक नवाचारों और शोध के माध्यम से समाज के सतत विकास और मानव जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अपने अनुभव साझा किए। जी, अगली खबर की बात करें तो भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने 2 दिन के भीतर 3 सफल परीक्षण कर देश की सुरक्षा को अवैध बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है जो दुश्मन की तरफ से दागी गई लंबी और मध्यम दूरी यानी कि 2000 से 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच में रोककर नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक दुश्मन की मिसाइलों के खिलाफ बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा यानी कि BMD क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए 10 और 11 जून को लगातार 3 परीक्षण किए गए। ये परीक्षण पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर और वायुमंडल की सीमा से बाहर बैलिस्टिक मिसाइलें मार गिराने की क्षमता रखने के लिए किए गए। DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली और मध्यम दूरी की एंटी शिप क्षमता को आंकने के अलावा नौसेना के मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण भी किया। और साथ ही अगली खबर है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अगले सेना प्रमुख, 30 जून को संभालेंगे काम। जी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सेना के अगले प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। वो 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्तमान में उप सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल सेठ को दिसंबर 1986 में आर्मर कोर में कमीशन मिला था। दक्षिण पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान दोनों की जिम्मेदारी संभाल चुके लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 2 ऑपरेशनल आर्मी कमान का नेतृत्व करने वाले चुनिंदा अधिकारियों में गिना जाता है इनको। पिछले 2.5 वर्षों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्रों की रणनीतिक निगरानी की। लगभग 4 दशक लंबे सैन्य करियर में उन्हें रणनीतिक क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव हासिल है। तो श्रोताओं, ये थी आज की कुछ खास खबरें जो हमने आपके साथ साझा की। और अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं एक मीठा सा गीत।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: जी, अंतराल से पहले जो आपने गीत सुना, उसे लिया गया था फिल्म आए दिन बाहर के से, और इसी गीत के साथ और इन्हीं जानकारियों के साथ आज का सुप्रभात हमीरपुर समाप्त करने की लेते हैं अपने श्रोताओं से अनुमति, और चलते चलते एक बार फिर आपसे बोलेंगे कि 9:30 पर हेलो हमीरपुर कार्यक्रम के दौरान हमें फ़ोन करना ना भूलें। नंबर है हमारा 2231322 और एरिया कोड है 0192।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संसार।

लोक संसार कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ बबीता जी। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी जानकारियों के बारे में। श्रोताओं, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हर घाटी, पहाड़ और गाँव अपने आप में पवित्रता और धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है। देवभूमि हिमाचल न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर ने भी एक अद्वितीय पहचान बनाई है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास बहुत ही पुराना है, जहाँ देवी देवताओं की पूजा अर्चना और देव परंपराएं आज भी जीवंत हैं। ये राज्य अपने धार्मिक आयोजनों, अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। राज्य का इतिहास प्राचीन देव संस्कृति में रचा बसा है, जहाँ देवी देवताओं की पूजा और उनसे जुड़ी मान्यताएं आज भी जीवंत हैं। इन परंपराओं में गहरी आस्था और सांस्कृतिक धरोहर झलकती है, जो इसे दूसरे प्रदेशों से अलग और अद्वितीय बनाती है। इनमें गहन आध्यात्मिकता और पवित्रता निहित है। हर गांव में किसी न किसी देवता का मंदिर है और प्रत्येक देवता की अपनी मान्यताएं और नियम हैं। यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान देवनीति के अनुसार होते हैं, जिन्हें विद्वान पुरोहित और देव समाज के अनुभवी लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पूर्ण करते हैं। देवताओं को यहाँ जीवंत माना जाता है और उनके कार्य जैसे कि यात्रा, जातर या उनसे जुड़े नृत्य आस्था और परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा हैं। देव कार्य के दौरान लोग अपनी व्यक्तित्व समस्याओं को देवता के सामने रखते हैं और समाधान पाते हैं। हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज दूसरे प्रदेशों से भिन्न और विशिष्ट हैं। यहाँ की संस्कृति में सामाजिक समरसता, प्रकृति के प्रति सम्मान और आस्था का गहरा प्रभाव है। देवता के स्थान का संचालन देव समाज द्वारा किया जाता है। इसमें सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। यहाँ देवता अपने अनुयायियों के साथ यात्रा निकालते हैं। इस यात्रा में देव नृत्य और संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जी, बिल्कुल। और हम भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे एक संगीत।

0: जी बिल्कुल, हिमाचल की वादियाँ और हिमाचल की घाटियाँ जो हैं वो सबका मन मोह लेती हैं। और हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं की एक अलग ही अनूठी पहचान है, और हिमाचल की जो धार्मिक परंपराएं हैं वो हिमाचल की एक खास धरोहर हैं, और हमें इस धरोहर को सहजना चाहिए, संजोकर रखना चाहिए। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक धरोहर हम आज भी मना रहे हैं। देखिए श्रोताओं, आज 14 जून है और आज विश्व रक्तदान दिवस है, और ये जो दिन विशेष हम मनाते हैं, जो खास दिन हम मनाते हैं, ये भी पूरे विश्व की और राष्ट्र की धरोहर होती हैं, और हमें इन जो दिन विशेष होते हैं इनको इनके हिसाब से ही मनाना चाहिए। जो इन दिन विशेष को और ज़्यादा खास बनाए, हमें इनसे जुड़े कार्य करने चाहिए। देखिए आज 14 जून है और हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किया गया था। ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो चलिए हम भी अपनी जागरूकता को बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये छोटी सी वार्ता।
1: नमस्कार, मैं मोनिका आज आपके समक्ष एक विशेष वार्ता लेकर आई हूँ, जिसका विषय है विश्व रक्तदाता दिवस। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक और अभिनंदन करती हूँ। आज 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर हम ऐसे महान कार्य की चर्चा करने जा रहे हैं जो मानवता, सेवा और जीवन रक्षा का प्रतीक है। यह दिन उन महान और निस्वार्थ लोगों को समर्पित है जो स्वेच्छा से रक्तदान करके अनगिनत लोगों के जीवन में नई आशा का संचार करते हैं। रक्तदान केवल एक चिकित्सा आवश्यकता नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। श्रोताओं, हमारे जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब किसी दुर्घटना, गंभीर बीमारी, शल्य चिकित्सा या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समय में रक्तदाता किसी अजनबी के लिए भी जीवन रक्षक बन जाता है। यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। आज के इस विशेष अवसर पर हम उन सभी रक्तदाताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने इस अमूल्य योगदान से अनेक लोगों को नया जीवन प्रदान किया है। साथ ही हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि रक्तदान क्यों आवश्यक है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम सभी इस पुनीत कार्य में किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए विश्व रक्तदाता दिवस के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मानवता की सेवा के इस महान संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथियों, बहुत से लोग पूछते हैं कि यह दिवस 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत बड़ा इतिहास और सम्मान छुपा हुआ है। 14 जून सन 1858 को ऑस्ट्रिया के महान वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दुनिया को बताया कि इंसानों का खून एक जैसा नहीं होता है, बल्कि अलग अलग ब्लड ग्रुप जैसे ABO में बंटा होता है। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन तथा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त प्रयासों से स्थापित किया गया। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और लोगों को नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। आज विश्व के अनेक देशों में इस अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम, रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। 14 जून की तिथि विशेष रूप से इसलिए चुनी गई क्योंकि यह उन महान वैज्ञानिक की जयंती थी। उन्होंने रक्त के विभिन्न समूहों की खोज की। उनके इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान ने चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी और असंख्य लोगों का जीवन बचाने में सहायता की। उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रक्तदान का महत्व आज के समय में और भी बढ़ गया है। कैंसर, थैलेसीमिया तथा अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय समय पर रक्त की आवश्यकता होती है। रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, इसलिए केवल मानव ही मानव की सहायता कर सकता है। आपका एक यूनिट रक्त कई लोगों के जीवन को बचाने में सहायक हो सकता है। यही कारण है कि स्वस्थ व्यक्तियों को समय समय पर रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि रक्तदान केवल एक सामाजिक सेवा नहीं है, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है। हमें इस दिवस के महत्व को समझते हुए समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए और योग्य होने पर स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए। हम सभी यह संकल्प लें कि जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सदैव आगे आएंगे और रक्तदान जैसे महान कार्य को बढ़ावा देंगे। अब प्रश्न यह है कि रक्तदाता कौन कौन बन सकता है, कौन कौन जो है इस कार्य में भाग ले सकता है। तो दोस्तों, सामान्यतः 18 से 65 वर्ष की आयु का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका शरीर का भार यानी कि वजन निर्धारित मानकों के अनुसार हो और जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो, रक्तदान कर सकता है। रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है और इससे दानकर्ता के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि नियमित स्वास्थ्य जांच के कारण व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक भी बन सकता है। जब हम रक्तदान करते हैं, तब हम किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में आशा की नई किरण जगाते हैं। एक यूनिट रक्त को अलग अलग घटकों में विभाजित करके कई मरीजों की सहायता की जा सकती है। इसलिए एक रक्तदाता कई लोगों के जीवन को बचाने में योगदान दे सकता है। समाज में रक्तदान को लेकर कई गलत धारणाएं प्रचलित हैं, जिनके कारण लोग रक्तदान करने से हिचकिचाते हैं। कुछ प्रमुख भ्रम और भ्रांतियां हैं जो कि मैं आपको बताने जा रही हूं, जैसे कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। सत्य तो यह है कि रक्तदान करने के बाद शरीर कुछ ही समय में रक्त की कमी को पूरा कर लेता है। उचित भोजन और आराम करने पर कोई स्थायी कमजोरी नहीं होती है। दूसरा भ्रम यह है कि रक्तदान करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लेकिन सत्य तो यह है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है। रक्तदान से स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा भ्रम यह है कि एक बार रक्तदान करने के बाद बार बार रक्त देना पड़ता है, लेकिन यह गलत है। रक्तदान पूरी तरह स्वैच्छिक है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा और निर्धारित अंतराल के अनुसार ही रक्तदान कर सकता है। अगला भ्रम यह है कि महिलाओं को रक्तदान नहीं करना चाहिए। जी नहीं, यदि महिला स्वस्थ है और निर्धारित स्वास्थ्य मानकों को पूरा करती है तो वह भी सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकती है। अगला भ्रम यह है कि रक्तदान से संक्रमण या बीमारी हो सकती है, तो यह बात भी बिल्कुल गलत है। रक्तदान में केवल नई और एक बार उपयोग होने वाली सुइयों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए संक्रमण का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। अगला भ्रम यह है कि बुजुर्ग या युवा रक्तदान नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल नहीं। निर्धारित आयु सीमा जैसे कि 18 से 65 वर्ष और स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। श्रोताओं, विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कई सरकारें, गैर सरकारी और सामाजिक संगठन, संस्थाओं, अस्पतालों, विद्यालय, महाविद्यालयों द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भारत में रक्तदान शिविरों के सबसे बड़े आयोजकों में से एक है। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल यानी कि NVTC राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदान और रक्त सेवाओं के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम संचालित करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विश्व स्तर पर सुरक्षित और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी विभिन्न देशों में रक्तदान जागरूकता अभियानों का समर्थन करता है। सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और ब्लड बैंक भी कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। नेशनल सर्विस स्कीम कॉलेज और विश्वविद्यालयों में रक्तदान शिविर आयोजित करता है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करता है और शिविरों का आयोजन करता है। भारत स्काउट एंड गाइड सामाजिक सेवा गतिविधियों के अंतर्गत रक्तदान जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक क्लब इन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। रक्तदान शिविर, स्वैच्छिक रक्तदान के लिए विशेष शिविर लगाए जाते हैं। जागरूकता रैलियां लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली जाती हैं। सेमिनार और व्याख्यान करके डॉक्टर रक्तदान से जुड़ी जानकारी देते हैं। निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं, स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान किया जाता है, उन्हें प्रशस्ति पत्र बांटे जाते हैं। जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी और अन्य माध्यमों से रक्तदान का संदेश फैलाया जाता है। कई स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी किए जाते हैं। लोगों को भविष्य में रक्तदान करने का संकल्प दिलाया जाता है। रक्तदान के महत्व को सरल और रोचक तरीके से समझाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोगों को रक्त संग्रह और रक्त संरक्षण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाती है। आइए अब बात करते हैं रक्तदान के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रक्तदान से पहले हल्का और पौष्टिक भोजन करें। खाली पेट रक्तदान ना करें। पर्याप्त पानी पिएं। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अपनी सही स्वास्थ्य जानकारी दें। पहचान पत्र साथ रखें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। रक्तदान के समय शांत और आरामदायक स्थिति में रहना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। यदि आपको कोई चक्कर, कमजोरी या असहजता महसूस हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। रक्तदान के बाद कुछ मिनट आराम करें और दिए गए जूस, पानी और नाश्ते का सेवन करें। रक्तदान के बाद कुछ घंटों तक भारी व्यायाम, वजन उठाने या अत्यधिक शारीरिक मेहनत से बचें। रक्तदान वाली बांह पर लगी हुई पट्टी को कुछ समय तक लगाए रखें और उस हाथ से भारी काम ना करें। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि रक्तदान के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, परंतु अब बात करते हैं कि रक्त प्राप्त करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात यह है कि डॉक्टर की सलाह पर ही रक्त चढ़वाएं। सुनिश्चित करें कि रक्त का ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर मरीज से मेल खाता हो। रक्त केवल लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक से ही प्राप्त किया हो। रक्त की समाप्ति तिथि और रक्त बैग की स्थिति पर जांच करें। रक्त चढ़ाने से पहले मरीज की पहचान और रक्त की जानकारी का मिलान किया जाए। रक्तदान के दौरान मरीज की नाड़ी, रक्तचाप, तापमान और अन्य लक्षणों पर निगरानी रखी जाए। यदि बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर या सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर या नर्स को सूचित करें। रक्तदान केवल प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में ही होना चाहिए। रक्त चढ़ाने के बाद भी कुछ समय तक मरीज की निगरानी की जानी चाहिए। डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देशों और सावधानियों का अच्छी तरह से पालन करें। श्रोताओं, इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस का थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स, अर्थात मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं। यह थीम अपने आप में एक बहुत गहरा संदेश है। यह हमें बताती है कि रक्त की एक छोटी सी बूंद भी मानवता की सबसे बड़ी सेवा बन सकती है। जब हम रक्त दान करते हैं तब हम केवल रक्त नहीं देते बल्कि किसी व्यक्ति को जीने का अवसर देते हैं और उसके परिवार को खुशियां तथा समाज को आशा प्रदान करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी युवाओं से, सभी साथियों से अपील करने आई हूं कि अपने अपने कर्तव्यों को समझें, क्योंकि सरकारें अस्पताल बना सकती हैं, डॉक्टर दवाइयां लिख सकते हैं, लेकिन उन अस्पतालों में जिंदगी की बूंद चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं। आइए आज एक सामूहिक शब्द लें कि हम स्वयं नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे। हम अपने परिवार, मित्रों और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करेंगे। हम सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ रील्स देखने के लिए नहीं बल्कि किसी आपातकाल में रक्त की जरूरत पड़ने पर संदेशों को फैलाने और मदद करने के लिए करेंगे। अपनी वार्ता को समाप्त करते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि रक्तदान को बनाओ अपनी शान, रक्तदान को बनाओ अपनी शान, तभी बढ़ेगा हमारे देश का मान, तभी बढ़ेगा हमारे देश का मान। मत चूको इस पावन फर्ज से मेरे दोस्त, मत चूको इस पावन फर्ज से मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारा एक प्रयास दे सकता है किसी को जीवन दान। धन्यवाद
0: जी, बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने रक्तदान दिवस पर हमारे साथ साझा की। और इसी जानकारी के साथ लेते हैं अपने श्रोताओं से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अगला प्रसारण।
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
7: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इको सिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
6: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
6: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक

0: कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध

0: Affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch rivals Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हिमाचल डायरी का आज का अंक। हिमाचल डायरी के आज के अंक में राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय हमीरपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीसीए और बीबीए कक्षाओं में दाखिले हेतु प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पात्र विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें वे कॉलेज की प्रवेश वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। महाविद्यालय प्रशासन के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अपने साथ प्रवेश पत्र और एक फ़ोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। बीसीए की प्रवेश परीक्षा 15 जून को और बीबीए की परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परिणाम कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें दाखिला मिलेगा। कॉलेज में बीसीए और बीबीए की 100-100 सीटें निर्धारित हैं और हर वर्ष इन कोर्सों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही दाखिला दिया जाता है। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को एक सप्ताह के भीतर फीस जमा कराने का समय दिया जाएगा। इसके बाद जुलाई के दूसरे सप्ताह से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। अगली खबर है, हमीरपुर में 16 जून से 15 अगस्त तक मछली आखेट पर रहेगा प्रतिबंध है। हमीरपुर जिले में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक मछली आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में मछली पकड़ने पर रोक के चलते मछली प्रेमियों को करीब 2 महीने तक स्थानीय ताजी मछलियाँ उपलब्ध नहीं होंगी। ये समय मछलियों के प्रजनन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए हर वर्ष इस अवधि में मछली संरक्षण और संख्या वृद्धि के उद्देश्य से मछली आखेट पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जिससे मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के साथ मछुआरों की आजीविका को भी मजबूती मिलती है। जिले में कुनहा, मान, चाह, सीरखड और सलासी खड में मत्स्य आखेट किया जाता है, जिससे जुड़े करीब 586 पंजीकृत मछुआरे अपनी आजीविका चलाते हैं। प्रतिबंध अवधि के दौरान सभी मछुआरों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस अवधि में मछली पकड़ता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार जुर्माने सहित कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान सम्मेलन FRC 2026 का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। सम्मेलन में देश और विदेश से आए वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों ने रसायन विज्ञान के नए शोध तकनीकों और भविष्य की संभावनाओं पर विचार साझा किए। सम्मेलन की एक प्रमुख उपलब्धि 140 से अधिक शोध पोस्टरों की प्रस्तुति रही। भारत, जापान, अमेरिका, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों के वैज्ञानिकों ने अपने शोध कार्य प्रस्तुत किए और अंत विर्षक शोध सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान रासायनिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सूक्ष्मदर्शी तकनीक, इमेजिंग और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने वैज्ञानिक नवाचारों और शोध के माध्यम से समाज के सतत विकास और मानव जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अपने अनुभव साझा किए। अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को भी मौसम खराब बना रहा। रोहतांग और धौलाधार में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। राजधानी शिमला सहित धर्मशाला और अन्य भागों में बारिश हुई। अधिकतम तापमान में दूसरे दिन भी 8 डिग्री तक गिरावट आई है। ऊना को छोड़कर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पारा 30 डिग्री से कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 14 जून को राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए रविवार को भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। 19 जून तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कई स्थानों पर अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में हल्की बर्फबारी और बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। चंबा जिले में शनिवार को पूरा दिन हल्की बारिश दर्ज की गई। भरमौर, पांगी की ऊपरी चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ, इससे मौसम सुहावना हो गया है। हिमाचल डायरी के आज के अंक में बस इतना ही। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:35 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
2: इसकी रचना की है, संगीत है विशाल और शेखर का।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मीका सिंह, अमिताभ भट्टाचार्य, नक्श और प्रीतम की आवाजों में एजेंट विनोद फिल्म का गीत। बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं एनी बडी कैन डांस। इस फिल्म का गीत आवाजें हैं मोहित चौहान, प्रिया पंचाल और तन्वी शाह की। मयूरपुरी ने बोल लिखे हैं, सागर जिगर का संगीत।

हम आपको याद दिला दें साथियों कि आज अभिनेता भारत भूषण का जन्मदिन है, तो आज के फनकार कार्यक्रम हमारा जो आज सुबह 9:30 बजे प्रसारित होगा वो केंद्रित होगा अभिनेता भारत भूषण पर। सुनते रहिए विविध भारती और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं विशाल ददलानी की आवाज़ में उन्हीं का लिखा गीत, संगीत है विशाल शेखर का। फिल्म का नाम बैंग बैंग।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और लीजिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको सुनवाते हैं ऋषिल वर्गीज की आवाज में जुबान फिल्म का गीत। वरुण ग्रोवर और आशु पाठक ने इस गीत को लिखा है, आशु पाठक का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और लीजिए सुनिए दीप मणि और नेहा भसीन की आवाजों में रेस 3 फिल्म का एक गीत। कुमार ने इस गीत की रचना की है, संगीत मीत ब्रोज का।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर 9:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। विश्व रक्तदान दिवस आज, देश सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। भगवान शिव के पवित्र धाम की किन्नौर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 से 30 जुलाई तक। धर्मशाला में एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे। और प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटों में हुई वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरदर शाखा के बीच शुरू की गई है। ये पहल केंद्रीय मंत्री की ग्रामीण डाक सेवकों और डाक सहायकों के साथ बातचीत में मिली प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिसमें दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में तेज संपर्क पर जोर दिया गया था। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने बताया कि मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित रेहरदर शाखा तक पहुंचने में वर्तमान में 2 घंटे से अधिक समय लगता है। ड्रोन सेवा से यह समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में कल संपन्न हो गया। सम्मेलन में घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि व्यापार और डिजिटल कृषि पर निर्णयों को शामिल किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक कृषि उत्पादन में तकरीबन 42% का योगदान ब्रिक्स देशों का है। सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
1: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। आज विश्व रक्तदान दिवस है। ये दिन अमूल्य मानव जीवन बचाने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में रक्तदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। इस वर्ष की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने विश्व रक्तदान दिवस पर देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्त की एक बूंद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है और किसी परिवार में फिर से खुशी ला सकती है। उन्होंने लोगों से मानव जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया। भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश की वार्षिक यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से लगभग 6050 मीटर यानी 19,850 फुट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक व साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पार कर पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: समुद्र तल से लगभग 6,050 मीटर यानी 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक एवं साहसिक तीर्थों में से एक है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 376 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाए। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए। इस यात्रा से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और जिले में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी के लिए
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। धर्मशाला में भारत ने कल रात 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 24 ओवर 5 गेंद में 194 रन बनाए थे। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार शतक बनाया। उन्होंने 51 गेंद पर 102 रन बनाए। भारत के लिए नए खिलाड़ी हर्ष दुबे और गुरनूर बराड़ ने 3-3 विकेट लिए। लगातार बारिश के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इधर ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। टूर्नामेंट के मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स में होगा। आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश में कल मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कांगड़ा जिले के विभिन्न उपमंडलों में भी ये अभ्यास सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक चलाया जाएगा। उपायुक्त हिमराज बैरवा ने बताया कि अभ्यास के माध्यम से आपदा से निपटने की तैयारियों में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कल आयोजित होने वाले मॉकड्रिल के सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त किरण भड़ाना ने लोगों से मॉकड्रिल के दौरान सायरन, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन गतिविधियों को देखकर न घबराने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 15 जून को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बहु आपदा मॉकड्रिल आयोजित करेगा। उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक विभिन्न काल्पनिक आपदा परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया जाएगा। मॉकड्रिल के तहत सिसु में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, चाकस नाला में भूस्खलन, जहलमा नाला में फ्लैश फ्लड, उदयपुर और काजा में भूकंप तथा व्हीलिंग वन क्षेत्र में रात्रिकालीन वनाग्नि से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, NDRF, SDRF और स्थानीय समुदाय की भागीदारी रहेगी। उपायुक्त किरण बढ़ाना ने लोगों से अपील की है कि मॉकड्रिल के दौरान सायरन, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन गतिविधियों को देखकर घबराए नहीं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: मॉनसून से पहले सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी और तपिश से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य में प्री मानसून की ये सक्रियता 15 से 19 जून तक बनी रहेगी, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 से 25 जून के बीच हिमाचल में दस्तक देने की अनुकूल संभावनाएं हैं। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हवाले से सुर्खी दी है, दिल्ली से चल रही हिमाचल सरकार। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, UPS लागू करेगी भाजपा सरकार। शिमला में बोले नड्डा, पेंशन के मामले में भाजपा की नीति पहले से ही स्पष्ट, जबकि अमर उजाला के मुताबिक मैं दिल्ली में ही करूंगा काम, पेंशन स्कीम पर जयराम व प्रदेश के नेता लेंगे फैसला। पंजाब केसरी का शीर्षक है, मंडी मनाली NH पर 20 किलोमीटर लंबा जाम। हिमाचल दस्तक लिखता है, धर्मशाला वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। मौसम पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, मॉनसून से पहले चोटियों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में झमाझम बारिश। अमर उजाला का शीर्षक है, रोहतांग धौलाधार में बर्फबारी, शिमला मंडी व कांगड़ा में बारिश, जबकि दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, हिमाचल में बारिश से तापमान में गिरावट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। विश्व रक्तदान दिवस आज, देश सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 से 30 जुलाई तक होगी आयोजित। धर्मशाला में एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराया 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे। और प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटों में हुई वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हेलो हमीरपुर लाइव फोन इन कार्यक्रम। जी बिल्कुल, आ गया है रविवार और थोड़े से लंबे अंतराल के बाद खत्म हुआ है श्रोताओं का इंतज़ार। तो उठाइए फ़ोन और मिलाइए कॉल और जानिए आज की फिल्मों के गीतों का हाल, यानी कि सुनिए आज की चुनिंदा फिल्मों से अपनी पसंद का गीत। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको गीतों का ना फिल्मों का नाम बता दें। पहली फिल्म है बेटा, दूसरी फिल्म है अभिमान, तीसरी फिल्म है कयामत से कयामत तक, हम आपके हैं कौन, आन मिलो सजना, प्यासा सावन और हम साथ साथ हैं। तो जो भी श्रोता इन चुनिंदा फिल्मों से गीत सुनना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। और देखिए पहले श्रोता जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं इनसे बात। हेलो,
5: नमस्कार जी।
4: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: जगजीत चंद जी, पन्नौर से।
4: जगजीत चंद जी, जी स्वागत है कार्यक्रम में, हमारे पुराने श्रोता हैं।
5: हाँ जी
4: जी, क्या हाल चाल है आपके?
5: बढ़िया जी, बढ़िया, सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम।
4: जी बिल्कुल, हमारे श्रोताओं का यही लगाव आकाशवाणी को और आगे बढ़ाता है।
5: हाँ जी
4: जी बिल्कुल, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे? जी अभिमान फिल्म का।
5: हाँ जी,
4: जी बिल्कुल, आपके रेडियो सेट्स पे भेजते हैं अभिमान फिल्म का ये गीत।

0: जी हेलो, हमीरपुर लाइव फोन इन कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। एक बार फिर से फिल्मों के नाम बता दूं, हमारे पास जो फिल्में बची हैं वो हैं बेटा, कयामत से कयामत तक, हम आपके हैं कौन, आन मिलो सजना, प्यासा सावन और हम साथ साथ हैं। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए करते हैं इनसे बात। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं यहाँ से राकेश बोल रहा हूँ, भजूरी से।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी
0: जी क्या करते हैं आप?
1: मैं तो एक्चुअली मैं बेसिकली आई एम टीचर।
0: जी जी
1: एडमिनिस्ट्रेटिव।
0: जी टीचिंग का काम तो देखिए बहुत ही बड़ा होता है, राष्ट्र के निर्माता होते हैं अध्यापक।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पर आजकल थोड़ा सा ये है कि टीचर्स की जो पुरानी एक वैल्यू थी ना, धीरे धीरे वो डिटोरिएट होती जा रही है ना।
0: चलिए जी, कुछ बदलाव जो एजुकेशन सिस्टम में है वो उस वजह से थोड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है। जी आज की फिल्मों से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: अभी तो शायद अभिमान का चला था ना।
0: जी जी
1: तो अभी कौन सी बची है आपकी, कोई पुरास में?
0: जी हमारे पास जो फिल्में बची हैं वो है बेटा, कयामत से कयामत तक, हम आपके हैं कौन, आन मिलो सजना, प्यासा सावन और हम साथ साथ हैं।
1: कयामत से कयामत तक का ना, पापा कहते हैं।
0: जी आकाशवाणी हमीरपुर में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: हेलो,
1: मैडम जी, राम राम।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं प्रवीण बोल रहा हूँ जी, हरिद्वार से। जी
0: जी प्रवीण जी, हरिद्वार से स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: आपका भी स्वागत है मैडम जी, हरिद्वार में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो बैठे बिठाए ईश्वर ने हमें कहाँ घुमा दिया,
1: जी जी
0: हरिद्वार के दर्शन करवा दिए।
1: जी
0: जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैं मैडम जी यहाँ पर जॉब करता हूँ। वैसे मैं भी हमीरपुर से हूँ,
0: जी
1: कबीर
0: जी
1: बस्तर से। जी
0: जी
1: जी
0: जी बहुत अच्छी बात है। हमीरपुर हरिद्वार में आप जॉब करते हैं?
1: जी मेरे को हो गए जी यहाँ पर 15-18 साल लगभग।
0: जी, फिर तो काफ़ी लंबा अंतराल जो है वो आपने हरिद्वार में ही बिता दिया।
1: हाँ, मैं आकाशवाणी हमीरपुर से, वैसे 1998 से जुड़ा था। पहले मैं घर पर आता था तो रेडियो पर कार्यक्रम सुनता था, अब
0: जी
1: आपके कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ यहाँ पर।
0: जी बिल्कुल, ये हमारे श्रोताओं का ही लगाव है। देखिए दूर दूर से जो है वो हमारे श्रोता आकाशवाणी हमीरपुर को सुनते हैं।
1: जी, हमारा भी यहाँ पर मन लगा रहता है। जी
0: जी बिल्कुल, तो आज की जो फिल्में हैं वो है हमारे पास बेटा, हम आपके हैं कौन, आन मिलो सजना, प्यासा सावन और हम साथ साथ हैं। कौन सी फिल्म का आप गीत सुनना चाहेंगे?
1: प्यासा सावन का लगा दो मैडम जी,
0: जी आपकी कोई पसंद?
1: कोई भी चला दो।
0: जी, आपने आकाशवाणी हमीरपुर में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी, राम राम।
0: नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं किशोरी लाल बोल रहा हूँ, पंचवटी से। थैंक
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: यू सो मच मैडम।
0: जी, आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी कम आ रही है।
1: अच्छा, कम आ रही है आवाज़ें।
0: जी, अब ठीक आ रही है। जी, और क्या करते हैं आप?
1: मैडम जी, मैं असाइनमेंट हूँ।
0: जी, रिटायर्ड हैं फिर तो बिल्कुल घर में आराम फरमा रहे होंगे और आकाशवाणी हमीरपुर के कार्यक्रमों का लुत्फ़ उठा रहे होंगे।
1: आकाशवाणी हमीरपुर तो मैं हमेशा सुनता रहता हूँ, बिल्कुल लग शाम तक,
0: जी
1: और बहुत सुनता हूँ मैं आपका, और रेडियो का बहुत शौकीन रखता हूँ। मैं रेडियो सुनता हूँ, टीवी टावी नहीं देखता हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। रेडियो के जो हमारे श्रोता हैं, जो शौकीन हैं, उन्हीं की वजह से जो आकाशवाणी हमीरपुर है वो तरक्की कर रहा है। जी, बहरहाल, कौन सी फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: कौन सी बची है पुरानी फिल्म?
0: हमारे पास फिल्में जो बची हैं वो है बेटा, हम आपके हैं कौन, आन मिलो सजना और हम साथ साथ हैं।
1: आन मिलो सजना का सुना दो, बड़ी पुरानी फिल्म है ये, वही भी गाना।
0: जी, आपने आकाशवाणी हमीरपुर में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार मैम।
0: मिश्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: मैम मैं सपना बोल रही हूँ ताल से।
0: जी। सपना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में
1: जी मैम ठीक हो?
0: जी। हम बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइए, आप कैसे,
1: मैम
0: हाल चाल हैं, क्या करती हैं आप
1: घर का काम करते हैं।
0: जी। घर का काम मतलब गृहिणी और घर जिसका ऋणी हो, घर में तो बहुत काम होते हैं
1: हाँ जी मैम।
0: जी।
1: आज मैम बड़े दिन बाद लगी मेरी कॉल।
0: जी देखिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है, बड़े दिनों बाद लगी पर लग गई
1: हाँ जी मैम।
0: जी। तो अब हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा समय है और जो फिल्में हमारे पास बची हैं वो है बेटा, हम
1: मैम
0: आपके
1: हम
0: हैं
1: साथ
0: कौन,
1: साथ का सुनवा दीजिए।
0: हम साथ साथ हैं
1: हाँ जी वो है भगवान, ये तो सच है कि भगवान है।
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ जी
0: आकाशवाणी
1: तो
0: हमीरपुर में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।

0: श्रोताओं, इन्हीं चुनिंदा फिल्मों के गीतों के साथ आज का हेलो हमीरपुर लाइव फोन इन कार्यक्रम समाप्त करने की लेते हैं आपसे अनुमति और बोलते हैं आपको नमस्कार। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। तजाकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है लघु वार्ता। लघु वार्ता में आज का विषय है वृद्धावस्था में की जाने वाली यौगिक क्रियाएं और यौगिक आसन। वृद्धावस्था में योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेहद उपयोगी है। ये जोड़ों के दर्द को कम करता है, संतुलन यानी कि बैलेंस सुधारता है, रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। बुजुर्गों को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार हल्के और सुरक्षित योगाभ्यास करने चाहिए। चलिए जानते हैं किस तरह के यौगिक आसन और योगाभ्यास बुजुर्गों को करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म व्यायाम यानी कि ज्वाइंट मूवमेंट्स के बारे में। गर्दन, कंधे, उंगलियों और टखनों को धीरे धीरे इसमें घुमाना होता है। ये जकड़न को दूर करता है। प्राणायाम यानी कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपाल भाती जैसे आसन इसमें करने चाहिए। ये फेफड़ों की क्षमता बढ़ाते हैं और तनाव को कम करते हैं। भद्रासन यानी कि बटरफ्लाई पोज, इसमें बैठकर पैरों के तलवों को मिलाकर हिलाना होता है। ये कूल्हों और घुटनों के लिए अच्छा होता है। वहीं ताड़ासन की बात करें यानी कि पाम ट्री पोज, सीधे खड़े होकर हाथों को ऊपर खींचना, इससे रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और लंबाई में सुधार होता है। वक्रासन यानी कि सिटिंग स्पाइनल ट्विस्ट, बैठकर रीढ़ को मोड़ना, ये पाचन क्रिया और शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है, फायदेमंद होता है। कुर्सी पर योगासन यानी कि चेयर योगा, जिन बुजुर्गों को खड़े होने में परेशानी होती है वे कुर्सी पर बैठकर भी सीधे बैठने और सांस लेने वाले व्यायाम या फिर अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही वृद्धावस्था में योगासन और यौगिक क्रियाएं करने से पहले बुजुर्गों को सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नया योगाभ्यास शुरू करने से पहले किसी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन जरूर लें और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही यौगिक क्रियाएं करें। अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक अपने शरीर पर दबाव ना डालें।

योग से सभी को लाभ होता है, लेकिन विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को खास लाभ होता है। योग को अपनी फिटनेस दिनचर्या में शामिल करने से आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं, जिनमें शामिल है बेहतर संतुलन। योग संतुलन सुधारने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। कई आसन शरीर को संतुलित रखने के लिए उपयोगी होते हैं और कई आसन हमारी मांसपेशियों को फायदा पहुंचाते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगासन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। उन्हें अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से इन योगासन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।

अंग और नाड़ी तंत्र सम्मिलित हैं। प्रत्यक्षतः स्वास्थ्य प्रदर्शित करने वाले प्रोत्साहनकारी और विनियमित करने वाला प्रभाव पड़ता है। इनका पूरे शरीर पर शुद्धकारी और दोबारा से यौवन प्रदान करने वाला प्रभाव भी होता है। योग आसनों के खिंचाव चरण में शरीर के कोशों के मध्य मूल आधार पर हल्का दबाव पड़ता है। ये आधार कोशों के मध्य सूचना के प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी हैं। योगासन इस कार्य में सुधार लाते हैं, जिससे निष्क्रिय नाली खुल जाती है। शरीर के स्नायुओं को भरा होने से ये कम करता है और गुर्दों के माध्यम से व्यर्थ तत्वों को बाहर निकालता है।

योग सिर्फ मांसपेशियों को फैलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने का भी माध्यम है। कई खड़े होने वाले आसन पैरों और कूल्हों को मजबूत करते हैं, जबकि ज़मीन पर किए जाने वाले आसन ऊपरी शरीर की ताकत बढ़ाने में सहायक होते हैं। सही मुद्रा में किए जाने पर लगभग सभी योगासन आपके कोर मसल्स को मजबूत करते हैं। योग द्वारा प्रदान की जाने वाली ये कम मेहनत वाली शक्ति वृद्धि बढ़ती उम्र में मांसपेशियों और सहन शक्ति को बनाए रखने के लिए वास्तव में फायदेमंद होती है। योग आपके शरीर की स्थिरता बढ़ाने वाली मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन व्यायाम है। नियमित अभ्यास से आप दिन भर की गतिविधियों में बेहतर संतुलन और स्थिरता महसूस करते हैं, जिससे गिरने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। यदि आप जोड़ों के दर्द या अकड़न से पीड़ित हैं, तो योग में शामिल खिंचाव वाले व्यायामों से आपको इन लक्षणों में कमी महसूस हो सकती है। वास्तव में एक अध्ययन में पाया गया है कि योग ने ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित बुजुर्गों को चिकित्सीय लाभ प्रदान किए हैं। जोड़ों के दर्द को कम करके आप बढ़ती उम्र में भी अपनी पसंदीदा गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी अन्य समस्याएं बुजुर्गों के लिए आम चिंता का विषय आज के दिन में बन गई हैं। नियमित रूप से योग का अभ्यास करके बुजुर्ग हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि योग उच्च रक्तचाप के पहले चरण से पीड़ित बुजुर्गों में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर सकता है। ऑक्सीडेटिव तनाव उच्च रक्तचाप के प्रमुख कारणों में से एक है और बुजुर्गों में हृदय संबंधी समस्याओं का एक प्रमुख जोखिम कारक है। योग को कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में भी जोड़ा गया है। तो श्रोताओं, ये तो थी लघु वार्ता। विषय था वृद्धावस्था में यौगिक क्रियाएं और यौगिक आसन किस तरह से हैं फायदेमंद। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 10:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीत।

एक देश की आज़ादी की कहानी, एक देश की आज़ादी की कहानी है वीर की जवानी की कहानी, है वीर की जवानी की कहानी, है वीर की जवानी की कुर्बानी।

देश की आन, देश की शान, देश के वीर जवान। और वीर जवान की पहचान है तिरंगे की शान।

उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना। फिल्म थी 23 मार्च 1931 ने शहीद। कार्यक्रम में अगला गीत शामिल कर रहे हैं फिल्म बोस द फॉरगॉटन हीरो से।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का देशभक्ति फिल्मी गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की लेते हैं आपसे अनुमति और बोलते हैं आपको नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 10:45 हुए हैं। ये प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

पहाड़ी लोक गीता पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग सुनने वाले सारे श्रोतियां जो नरेश चंदेल दी राम राम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं के आर सहगल दे स्वर च इस पहाड़ी गीता दे।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
4: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
3: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
4: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की

शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.go

0: की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

इसी लोक गीता कन्नै अज दा लोक रंग कार्यक्रम इत्थे लगेरा संपन्न होना। दिनारे 11 बजने जो है आकाशवाणी शिमला ते हुण तुहां सुनना प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरदर शाखा के बीच शुरू की गई है। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने बताया कि मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित रेहदर शाखा तक पहुंचने में वर्तमान में 2 घंटे से अधिक समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित कार्यक्रमों के तहत वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। इस आयोजन का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम पर सर्वाधिक दर्शकों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। ये दिन अमूल्य मानव जीवन बचाने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में रक्तदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। इस वर्ष की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने विश्व रक्तदान दिवस पर देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्त की एक एक बूंद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है और किसी परिवार में फिर से खुशी ला सकती है। उन्होंने लोगों से मानव जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया। आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश में कल मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि अभ्यास के माध्यम से आपदा से निपटने की तैयारियों में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कल आयोजित होने वाले मॉकड्रिल के सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 15 जून को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बहु आपदा मॉक ड्रिल आयोजित करेगा। उपायुक्त किरण भ्राना ने बताया कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक विभिन्न काल्पनिक आपदा परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत सिसु में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, चाकस नाला में भूस्खलन, जहलमा नाला में फ्लैश फ्लड, उदयपुर और काजा में भूकंप तथा व्हीलिंग वन क्षेत्र में रात्रिकालीन वनाग्नि से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय समुदाय की भागीदारी रहेगी। उपायुक्त किरण बढ़ाना ने लोगों से अपील की है कि मॉकड्रिल के दौरान सायरन, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन गतिविधियों को देखकर घबराए नहीं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश की वार्षिक यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से लगभग 6050 मीटर यानी 19850 फुट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक व साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें देश विदेश के हजारों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पार कर पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: समुद्र तल से लगभग 6050 मीटर यानी 19850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक एवं साहसिक तीर्थों में से एक है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 376 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाए। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए। इस यात्रा से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और जिले में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी के लिए
0: आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। टूर्नामेंट के मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स में होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर 12 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।

साइकिल के बड़े प्रशंसक थे और कभी कभी वो दोनों रियाज किया करते थे। बात यह थी कि माटुंगा में राजखोसला का घर था और केएल सहगल भी उसी के पास रहा करते थे। हर सुबह राजखोसला सहगल के पास जाकर रियाज करते, उन्हें गाते हुए सुनते।

एक दफा केएल सहगल ने राज खोसला से कहा कि आप रेडियो या फिल्मों में क्यों नहीं आते। बस यहीं से राज खोसला ने गायकी का संघर्ष शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब वो बतौर गायक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से भी जुड़े। 1950 में आई बतौर संगीतकार मदन मोहन की पहली फिल्म आंखें, जिसके निर्देशक थे देवेंद्र कोयल। इस फिल्म में राज खोसला ने एक गाना भी गाया। इस गाने के रिकॉर्ड पर लिखा है कोरस लेड बाय राज खोसला और इस गाने के गीतकार हैं भगवान दत्त मिश्र। ये कहना सही होगा कि देव आनंद और राज खोसला की दोस्ती पुश्तैनी थी। दरअसल इन दोनों के पिता एक साथ कॉलेज में पढ़े थे, तो दोनों परिवारों के बीच गहरा रिश्ता था और ये रिश्ता अगली पीढ़ी तक चला आया था। बात यह थी कि बतौर गायक राज खोसला का करियर ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा था। एक दिन बस यूं ही देव ने कहा कि राज, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है गुरुदत्त, वो अपनी अगली फिल्म बस शुरू करने वाला है, क्यों ना तुम उसके असिस्टेंट बन जाओ। राज खोसला ने कहा, देव तुम जानते हो कि मेरी दिलचस्पी फिल्म डायरेक्शन में नहीं है, मैं तो गायक बनना चाहता हूं। देव आनंद के जोर देने पर राज खोसला किसी तरह राजी हो गए और फिल्म बाजी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे।

1951 में आई बाजी एक क्राइम थ्रिलर थी। देव आनंद इस फिल्म के हीरो थे। राज खोसला ने अपनी फिल्मी तालीम गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में इसी फिल्म से शुरू की थी। हालांकि गुरुदत्त की भी ये पहली निर्देशित फिल्म थी और इसकी कहानी बलराज साहनी की थी। बाजी हिट रही और इसने गुरुदत्त और देव आनंद दोनों को पॉपुलर बना दिया। इसके बाद 1952 में आई जाल, एक और क्राइम थ्रिलर फिल्म। कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। राज खोसला अब गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर तो थे ही, लेकिन वो फिल्म की कहानी और फिल्म के तकनीकी पक्षों में भी मदद किया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि जाल फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान तय हो गया ये गाना राज खोसला गाएंगे, संगीतकार सचिन देव बर्मन के निर्देशन में। राज खोसला ने यह गाना गाया भी, पर गुरुदत्त को राज खोसला की गायकी और उनकी अदायगी पसंद नहीं आई। इसके बाद ये गाना हेमंत

सन 1954 में आई आर पार एक रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म थी। गुरुदत्त और श्यामा की मुख्य भूमिकाएं और असिस्टेंट डायरेक्टर अभी भी राज खोसला ही थे। राज खोसला ने अब तक गुरुदत्त से निर्देशन की तमाम

0: जादूगर।
1: अगर आपको इस फिल्म की शुरुआत याद हो तो एक महिला नजर आती है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, वो एक टेलीफोन डायल करती है और कहती है,
2: हेलो मैं हूँ, उसे किसी तरह रास्ते से हटा दो, हो सके तो रुपए से या समझे।
1: और फिल्म शुरू होने के एक मिनट के भीतर ही सस्पेंस कायम हो जाता है। सीआईडी इतनी जबरदस्त रही कि लोग अपनी सीटों से जमे रहे ये जानने के लिए कि इसका क्लाइमेक्स क्या है। इस फिल्म ने हंगामा मचा दिया। सीआईडी के बाद गुरुदत्त ने राज खोसला के सामने अपनी अगली फिल्म निर्देशित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राज खोसला अपना मन बना चुके थे। उन्होंने कहा कि देखिए गुरुदत्त जी, मैं एक छोटा पौधा हूं, आप जैसे बरगद के नीचे फल फूल नहीं पाऊंगा, इसलिए अब मैं आपके साथ फिल्में नहीं करूंगा।

जहां से राज खोसला की अपनी धारा शुरू होती है। कमाल की बात यह है कि गुरुदत्त की निगहबानी में सिनेमा की तालीम लेने वाले राज खोसला का सिनेमा उनसे एकदम अलग है। गुरुदत्त की फिल्मों में जहां बहुत इंटेंसिटी होती थी, मुख्य किरदार की तकलीफ, उसका संघर्ष, उसकी जिंदगी का अंधेरा, उसकी कश्मकश, पर राज खोसला का सिनेमा इस सबसे अलग था। वो शुद्ध मनोरंजन के साए में ढला सिनेमा था। गुरुदत्त की बजाय राज खोसला ने देव आनंद के नवकेतन बैनर के साथ काम करना ज्यादा सही समझा। सन 1958, राज खोसला ने बनाई काला पानी।

इस फिल्म की कहानी राज खोसला के सहायक बप्पी सोनी ने लिखी थी, जो आगे चलकर बड़े निर्देशक बने। राज खोसला ने नाटकीयता और रोमांच को अपनी फिल्मों का आधार बनाया। उनकी फिल्मों में कई नाटकीय मोड़ होते थे, वो आपको चौंकाती थीं और किसी ऐसी दिशा में मुड़ जाती थीं जिसकी अमूमन दर्शक कल्पना नहीं करते। काला पानी असल में देव आनंद के साथ राज खोसला की एक के बाद एक आने वाली फिल्मों की अगली कड़ी बनी। हम यहां दोहरा दें कि राज खोसला की पहली दो फिल्मों मिलाप और CID दोनों के हीरो देव ही थे।

0: काला पानी के बाद सन 1958 में आई 16वां साल, ये नवकेतन की फिल्म नहीं थी बल्कि इसके निर्माता थे चंद्रकांत देसाई। इस फिल्म में भी देवानंद और वहीदा रहमान थे। राज खोसला को सस्पेंस बिल्ड करने में मजा आता था, यही उनकी फिल्मों की खासियत रही है। 16वां साल में भी आप यही सोचते रहते हैं कि अब की बार वहीदा रहमान इस मुसीबत से पार हो पाती हैं या नहीं, आगे क्या होगा। बहुत ही नाटकीय, शानदार, दिलचस्प फिल्म थी 16वां साल। संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। इस गाने में माउथ ऑर्गन उनके बेटे पंचम ने बजाया था, जो आज आरडी बर्मन कहलाते हैं। गाने मजरूह सुल्तानपुरी के थे।
1: हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा, बहुत भो

थे सिनेमेटोग्राफर जाल मिस्त्री और दूसरे थे उनके अभिन्न मित्र देव आनंद। जाल मिस्त्री ने राजखोसला के साथ मिलकर बनाई बंबई का बाबू। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब राज ने बतौर सहायक निर्देशक काम शुरू किया तो भी उनके साथ देव आनंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली फिल्म बनाई मिलाप तो उसमें भी देव आनंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर काम करना शुरू किया तो उसमें भी देव आनंद थे। इस फिल्म में देव की हीरोइन थी सुचित्रा सेन। हालांकि कहते हैं कि पहले इस फिल्म के लिए मधुबाला का चुनाव किया गया था। बहरहाल सुचित्रा सेन ने कम ही हिंदी फिल्मों में काम किया है और ये फिल्म उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए याद की जाती है। यहां कुछ दिलचस्प बातें आपको बता दें। फिल्म बंबई का बाबू ओ हेनरी की कहानी अ डबल डाइड डिसीवर से प्रेरित थी और इसे लिखा था जाने माने लेखक और निर्देशक राजेंद्र सिंह बेदी ने।

1960 में एक बड़ी घटना हुई। राज खोसला ने निर्माता बनने का फैसला किया। इसमें उनका साथ निभाया उनके दो दोस्तों ने,

एक मुसाफिर एक हसीना का भी परिदृश्य वही था जो राज खोसला की फिल्मों का आधार होता है, सस्पेंस, रोमांच, जासूसी, नाटकीयता। इस फिल्म ने धूम मचा दी थी।

साधना के रूप में राजखोसला को वो हीरोइन मिली जिसकी शायद उन्हें तलाश थी। राजखोसला हमेशा नई रोमांचक कहानियों की तलाश में रहते थे। बस इत्तेफाक से इत्तेफाक के सिरे जुड़ते चले गए और साधना के साथ राजखोसला ने एक फिल्म त्रयी बनाई, एक ट्रायोलॉजी। इसकी खासियत यह है कि इन तीनों फिल्मों की नायिका के साथ जुड़ा है रहस्य का कोहरा। सन 1964, वो कौन थी?

सन 1966 मेरा साया। सन 1967 अनीता।

वो कौन थी में साधना ने डबल रोल निभाया था, सफेद साड़ी में रहस्यमय साधना और उनका सस्पेंस। पूरी फिल्म आपको बांध कर रखती है, आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार, संगीत मदन मोहन।

इस फिल्म का ये गाना जब रिकॉर्ड होना था तब लता जी का गला खराब था और वो गाना गाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में मदन मोहन ने खुद ये गाना गाया था और शूटिंग के लिए भेज दिया गया था।

0: ये कह के वो चले गए तो मदन जी ने एक सिटिंग बुलाई संडे के दिन। सिप्पी साहब बैठे हैं सामने, मनोज कुमार बैठे हैं, चार पांच म्यूजिशियन हैं, राजा साहब बैठे हैं। तो मनोज कुमार जी ने उनसे कहा कि फिर से सुन लें एक रिक्वेस्ट, आपको पसंद नहीं आता दूसरी ट्यून्स। उन्हें कहा ठीक है सुना। जैसे उन्होंने फिर से सुनी, मदन जी ने खुद गा के सुनाई, तो वो इधर उधर देखने लगे कि यार मेरा जूता कहाँ है। तो मनोज कुमार क्या कहता, दिल कर रहा है मैं अपना ये जूता उठा के अपने सर पे मारूं।
1: ओह गॉड,
0: मैंने इस ट्यून को मना कर दिया। मनोज कुमार जी ने बड़े फखर के साथ मुझे कहा था इस गाने को मैंने बचाया है, और आज ये गाना अल्टीमेट सॉन्ग
1: जी
0: माना जाता है।

0: साधना के साथ सस्पेंस वाली फिल्मों की कड़ी की दूसरी फिल्म थी मेरा साया। इस फिल्म में भी साधना डबल रोल में थी। आपको बता दें कि मेरा साया असल में राजा परांजपे की एक मराठी फिल्म पाथलक का रीमेक थी और ये मराठी फिल्म जयंत देवकुले के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी।
1: मैं एक फिल्म बना रहा था मेरा साया। मदन मोहन उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन दिनों एक दिन पहले रिहर्सल हुआ करता था और वो भी सुबह 9 बजे। मैं और मदन मोहन बैठे हुए थे और लता का इंतजार हो रहा था। गाना हमारे सामने था लेकिन धुन नहीं बनी थी। जैसे ही लता आई तो उसने हमारी शक्लें देखी और फौरन समझ गई कि कोई बात है। तो उन्होंने कहा, मदन भैया क्या बात है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, ट्यून नहीं है, धुन नहीं है। तो जरा सा मुस्कुराई और फिर कहने लगी, क्या मुखड़ा क्या है, जरा सुनाओ। तो उन्होंने मुखड़ा सुनाया। एक आधा मिनट भी नहीं सोचा होगा लता ने और फौरन कहा कि मदन भैया इसे नंद राग में बना के देखो। और 2-3 मिनट में वो ट्यून बन गई और वो गाना बड़ा अजब और मेरे लिए बहुत बड़ी यादगार।
0: राज खोसला की ये वो फिल्में हैं जिनमें नाटकीयता है, सस्पेंस है, बेमिसाल संगीत है और है शानदार अभिनय।

कहते हैं कि ये फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक की मशहूर फिल्म वर्टिगो से प्रेरित थी। अनीता को वो कामयाबी नहीं मिली जो इस सीरीज की बाकी दो फिल्मों को मिली थी। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इस बीच सन 1966 में राजखोसला ने फिल्म बनाई दो बदन। अभिनेत्री आशा पारेख ने इससे पहले तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम और कारवां जैसी हिट फिल्में की थी, लेकिन उनकी एक खास छवि थी। वो एक सजीली नायिका, एक ग्लैमर गर्ल के तौर पर देखी जाती थी। अभी तक उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं आई थी जो उनकी अभिनय क्षमता को साबित करे। ये काम राज खोसला ने किया।
1: जब

0: कितना अजीब इत्तेफाक है कि साधना के बाद आशा पारेख के साथ भी राज खोसला की 3 फिल्में आईं। पहली थी 2 बदन, जिसने आशा पारेख को एक सशक्त अभिनेत्री के तौर पर स्थापित कर दिया। एक बार आशा पारेख ने कहा था, इंडस्ट्री में सभी को लगता था कि मैं सिर्फ एक ग्लैमर और डांसिंग गर्ल हूं, एक अच्छी अभिनेत्री नहीं। मुझे नहीं पता कि राज खोसला ने क्या सोचा था और उन्होंने मुझे 2 बदन ऑफर की। लेकिन इस फिल्म के बाद आलोचकों का मुंह बंद हो गया और मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं भी ऐसे सीरियस रोल कर सकती हूँ।
1: No.

इस फिल्म के लिए सिमी ग्रेवाल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सन 1969 में राजखोसला लेकर आए फिल्म चिराग। इस फिल्म में आशा पारेख के साथ हीरो थे सुनील।

आशा पारेख के साथ राज खोसला ने 3 फिल्में की, दो बदन, चिराग और इस कड़ी की तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी सन 1978 में आई मैं तुलसी तेरे आंगन की।

ये फिल्म चंद्रकांत काकोडकर के एक मशहूर मराठी उपन्यास अशीतोषी प्रीत पर आधारित थी। चंद्रकांत काकोडकर लंबे समय से राज खोसला के साथ काम करते आ रहे थे। उन्होंने अनीता और दो बदन के डायलॉग भी लिखे थे। ये फिल्म राज खोसला की सस्पेंस फिल्मों से एकदम अलग थी। दो महिलाओं की कहानी, रिश्तों की उलझन, कश्मकश, आत्मसम्मान की कहानी। नाटकीय फिल्मों पर जो पकड़ राज खोसला की थी, वो उन्हें एक विलक्षण निर्देशक

इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया। इस फिल्म को 3 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले थे। राज खोसला को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार।

0: बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार जीता डॉक्टर राही मासूम रजा ने इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये उनका 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार था। यहां खास बात यह है कि 42 बरस की उम्र में नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है क्योंकि इस उम्र तक अभिनेत्रियों का करियर ढलान पर पहुंच जाता है। राज खोसला की खासियत ये थी कि वो तरह तरह के विषयों पर फिल्में बनाते रहे। सन 1959 में उन्होंने बनाई दो रास्ते।
1: मुझे संगीत ने जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया है। एक वक्त था कि मुझ पर बहुत कर्जे थे और एक गाने ने मुझे इन सब कर्जों से निकाल दिया। किस्सा ये था कि पिताजी सहगल के एक गाने को बहुत पसंद करते थे और अक्सर सुना करते थे। उस जमाने में ग्रामोफोन पर एक भोंपू हुआ करता था और एक कुत्ता सुना करता था। इसी गाने से मुतासिर होकर मैंने एक फिल्म बनाई दो रास्ते, और फिर संगीत ने मेरी मदद की और ये फिल्म गोल्डन जुबली हिट हुई। लीजिए

राजेश खन्ना और मुमताज की अभिनय वाली ये फिल्म खासी कामयाब रही। जब मुमताज बी ग्रेड की फिल्मों में काम कर रही थी, तब दो रास्ते के जरिए राज खोसला उन्हें मुख्य धारा की हीरोइन के तौर पर स्थापित कर पाए।

तक राज खोसला तकरीबन हर जॉनर की फिल्में बना चुके थे, बाकी थी डाकुओं की कहानी। उन्होंने एक शानदार ताना बाना बुना और 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश।

विनोद खन्ना ने अपना करियर 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से शुरू किया था। अमूमन वो खलनायक के रोल कर रहे थे। मेरा गांव मेरा देश में उन्होंने जब्बर सिंह की भूमिका की और उन्हें एक मुकम्मल पहचान मिली।

सन 2021 में जब इस फिल्म के 50 बरस पूरे हुए तो अभिनेता धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 50 साल 50 लम्हे बनकर गुजर गए, मेरे लिए ये फिल्म बहुत मायने रखती है।

देव आनंद के साथ राज खोसला का जो नाता था उसे राज लगातार निभाते रहे। सन 1973 में उन्होंने देव आनंद के लिए बनाई शरीफ बदमाश, इसकी हीरोइन थी हेमा मालिनी।

0: सन 1975 में राज खोसला लेकर आए फिल्म प्रेम कहानी। इसके कलाकार थे शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज और विनोद खन्ना।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

दौर में राज खोसला की सबसे बड़ी फिल्म कही जा सकती है यश जौहर की दोस्ताना। इसके कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलेन और प्राण। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

80 का दशक आते आते राज खोसला का करियर अपने आखिरी दौर तक पहुंच चुका था। उनकी हिट फिल्मों का जो जादू 70 के दशक तक कायम था वो अब बुझने लगा था। सन 1984 में उन्होंने धर्मेंद्र, सनी देओल, वहीदा रहमान और शर्मिला टैगोर को लेकर बनाई सन

राज खोसला के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी सन 1989 में आई नकाब। कलाकार थे ऋषि कपूर और फरहा। इस फिल्म के लेखक थे डॉक्टर राही मासूम रजा। राज खोसला के करियर की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1972 में उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, दो चोर, लेकिन इस अकेली फिल्म का निर्देशन उन्होंने खुद नहीं किया। इसके निर्देशक थे पद्मनाभ। धर्मेंद्र, तनुजा, शोभना समर्थ और जलाल आगा जैसे कलाकार, गीत मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत आर डी परमन।

नब्बे का दशक आते आते राज खोसला सिनेमा से दूर हो गए। एक लंबा करियर, एक से बढ़कर एक फिल्में, फिल्मों की कमाल की विविधता, कहीं सस्पेंस थ्रिलर तो कहीं सामाजिक फिल्में और कहीं डाकुओं वाली फिल्में। कलाकारों की पीढ़ियां, संगीतकारों की और लेखकों की पीढ़ियां बदलती चली गई थीं, पर राज खोसला का करियर जारी रहा था।

लेकिन हर सूरज को एक दिन ढलना होता है। 9 जून 1991, 66 बरस की उम्र में राज खोसला ने आखिरी सांस ली।

वो अपने पीछे छोड़ गए अपनी ढेर सारी मनोरंजक फिल्में। ये वो फिल्में हैं जो दर्शकों को बांध कर रखती हैं। ये हमारे लिए मनोरंजन का स्तंभ हैं। हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।

0: आप सुन रहे थे राजखोसला पर यह विशेष फीचर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल मंडल।
2: नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल। नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल।

बालमंडल कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को भैया नरेश का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि हमारे सभी नन्हे मुन्ने बच्चे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज बच्चों इसलिए भी खुश बहुत रहते हैं क्योंकि आज है संडे, और संडे मतलब फंडे। बच्चों दिन के 12 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूँ लेकर के कार्यक्रम जिसका नाम है बालमंडल। बच्चों पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। बच्चों इसकी सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका होता है। बच्चों हाथी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर, यानी पृथ्वी पर रहने वालों में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी है। और उसकी सूंड में लगभग 40,000 मांसपेशियां होती हैं बच्चों, जिससे वह भारी से भारी पेड़ को भी उठा सकता है और छोटी सी घास को भी उठा सकता है। बच्चों अगर जिराफ की बात करें तो जिराफ की गर्दन तो बहुत लंबी होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी गर्दन में भी केवल 7 हड्डियां होती हैं जितनी इंसान की गर्दन में होती हैं। बच्चों अगर मधुमक्खियों की बात करें तो एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में केवल 1 चम्मच से भी कम शहद बना पाती हैं, इसलिए हमें शहद की एक एक बूंद की कीमत समझनी चाहिए। बच्चों पेड़ जो हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक बड़ा पेड़ एक दिन में लगभग 4 लोगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन देने में मदद कर सकता है, इसलिए हम सबको पेड़ लगाना चाहिए और उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। बच्चों आपने कंगारू तो देखा होगा, कंगारू पीछे की ओर नहीं चल सकता क्योंकि उसकी जो मजबूत पूंछ और पैरों की बनावट ऐसी होती है जो केवल उसे आगे बढ़ने में ही मदद करती है। बच्चों चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। उन्होंने 1969 यानी 1969 में इतिहास रच दिया था। बच्चों पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है लेकिन पीने योग्य केवल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए पानी की हर बूंद अनमोल है। बच्चों जो ज्ञान की दुनिया होती है वो तो बहुत विशाल है और हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ये तो कार्यक्रम की बात हुई और हम अब अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को सुना रहे हैं ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बाल मंडल। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है, यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ा ऑपरेशन हो या कोई गंभीर बीमारी हो जाए, तो उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है? ऐसे समय में अक्सर रक्त यानी खून की आवश्यकता बढ़ती है। रक्त का बच्चों कोई कारखाना नहीं होता और ना ही रक्त को कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। यह केवल एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा रक्त दान करने से ही प्राप्त हो सकता है। बच्चों, आज है 14 जून और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी विश्व रक्तदाता दिवस। बच्चों, विश्व रक्तदाता दिवस का उद्देश्य होता है कि लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए और उन लोगों का सम्मान किया जाए जो नियमित रूप से रक्तदान करके दूसरों का जीवन बचाते हैं। बच्चों, यह दिवस वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी। बच्चों, आप अभी तो रक्तदान करने की उम्र में नहीं हैं, लेकिन आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसके बारे में अपने परिवार और समाज को बता सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े होंगे और स्वस्थ रहेंगे, तब आप भी रक्तदान करके किसी की ज़िंदगी बचाने में अपना योगदान कर सकते हैं। बच्चों, एक यूनिट रक्त कई लोगों के काम में आ सकता है। रक्त के अलग अलग घटक होते हैं, जैसे लाल रक्त कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। बच्चों, इसको अलग करके ज़रूरतमंद मरीजों को दिया जाता है, इसलिए एक रक्तदाता कई लोगों के जीवन में खुशियां ला सकता है। बच्चों, रक्तदान से ना तो शरीर कमज़ोर होता है, ना ही कोई नुकसान होता है। डॉक्टरों की देखरेख में सुरक्षित तरीके से रक्तदान किया जा सकता है और कुछ ही समय में शरीर खोए हुए रक्त की भरपाई कर लेता है। और बच्चों, हमेशा दूसरों की मदद करने की भावना रखनी चाहिए। रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है। यह ना तो जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना ही भाषा देखता है। रक्त की हर बूंद किसी ज़रूरतमंद के लिए जीवन का संदेश लेकर आती है। और आज है विश्व रक्तदाता दिवस और इस अवसर पर हम सबको इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर, इस समय आप सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर और कार्यक्रम है बाल मंडल। बच्चों, कहानियाँ जितना हमारा मनोरंजन करती है उससे ज़्यादा हमें शिक्षा भी देती है। तो चलिए अब सुनते हैं ऐसी ही एक शिक्षाप्रद कहानी। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गाँव में रामू नाम का दर्जी रहता था। रामू मेहनती था और बहुत अच्छा दर्जी था। बच्चों, दूर दूर से दूसरे गांव के लोग भी उससे कपड़े सिलवाने आते थे। रामू दर्जी की आमदनी तो बहुत थी बच्चों, लेकिन फिर भी उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी, यानी वो बचत नहीं कर पाता था। रामू दर्जी जो भी कमाता शाम को अपनी पत्नी को दे देता था, और जो उसकी पत्नी थी वो खर्चीले स्वभाव की थी। बच्चों, जो भी वो कमाता था वह उसे खर्च कर देती थी। रामू उसकी इस आदत से बेहद परेशान था। बच्चों, रामू ने कई बार अपनी पत्नी को समझाया, अगर वो ऐसे ही खर्च करती रहेगी तो बुरे वक्त में कौन सहायता

करेगा, लेकिन रामू की बातों का उसकी पत्नी पर कोई भी असर नहीं होता था। इसी प्रकार समय गुजरता रहा और शादियों का समय भी आ गया। और बच्चों, आप जानते हैं कि जब शादियों और त्योहारों का समय होता है तो जो कपड़े, बहुत से लोग कपड़े सिलवाते हैं, तो इसलिए रामू के पास तो अब पहले से भी बहुत ज़्यादा काम आ गया था और पैसे भी आ रहे थे। रामू ने सोचा क्यों ना वह अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचत के रूप में दुकान में छुपा कर रखे। ऐसा सोचकर वह बाज़ार से क्या गुल्लक ले आया और अपने आधे रुपयों को वो गुल्लक में डालने लगा। बाकी के रुपयों को वो अपनी पत्नी को दे देता था। समय गुजरता रहा और वो रोज ऐसा ही करता था कि जो भी उसकी कमाई होती थी आधे पैसे अपने गुल्लक में रखता था और आधे पैसों को वो अपनी पत्नी को दे देता था, लेकिन उसको नहीं बताता था कि आधे पैसे उसने दुकान में रखे हैं। एक समय की बात है, रामू बहुत बीमार हो गया। बीमारी के चलते अब वो दुकान पर भी नहीं जा पाता था। ऊपर से डॉक्टर और दवाई का खर्च अलग से होता था। ऐसी परिस्थिति में उसकी पत्नी जो थी उसे बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि वो अगर अपने पति की बात मान लेती तो रोज़ थोड़ी थोड़ी बचत करती तो आज उसके पास भी कुछ ना कुछ पैसे होने थे। तो अब क्या था कि किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत भी आ गई थी। उसने अपने पति से कहा कि अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, अब हम क्या करेंगे। तो रामू बोला, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन तुम ऐसा करो, दुकान में जाओ, वहाँ पर एक गुल्लक है, उसको लेकर आओ। उसकी पत्नी दुकान में गई, उसने वो गुल्लक लाया और अपने पति के हाथों में सौंप दिया। जब उसके पति ने उस गुल्लक को तोड़ा तो उसे देखकर उसकी पत्नी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें तो बहुत सारे पैसे थे। उसे देखकर उसे अब लगा कि जो उनका बुरा वक्त है, उस बुरे वक्त में उन पैसों से वो अपना बुरा वक्त काट सकते हैं। तो बच्चों, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटी छोटी बचत बुरे वक्त में काम आती है। अब रामू की पत्नी ने प्रण किया कि वो फिजूल खर्ची नहीं करेगी और रोज़ थोड़े थोड़े पैसे ज़रूर बचाएगी। और बच्चों, हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि धन तो बुरे वक्त में वही धन होता है जो बुरे वक्त में काम आए, लेकिन अगर हमारे पास अधिक धन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे फिजूल खर्ची करें। जितनी ज़रूरत है उतना तो ज़रूर करना चाहिए, और जितनी ज़रूरत नहीं है उसको बचत के रूप में बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, जहाँ हम रख सकते हैं, ज़रूर रखना चाहिए।

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था?
1: नहीं, आ रहा था।
0: नहीं नहीं, जा रहा था।
2: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
3: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

0: वातावरण
1: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी
0: UGC से मान्यता प्राप्त हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बाल मंडल। बच्चों, आजकल पढ़ाई, मोबाइल, टीवी

बच्चों, इसी गीत के साथ अब आज का कार्यक्रम बाल मंडल यहीं पर संपन्न हो रहा है।

नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल। नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल मंडल। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सिलसिला फिल्म के इस गीत से। रचना जावेद अख्तर की है और संगीत है शिव हरी का।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में धरती कहे पुकार फिल्म का ये गीत था। रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सैनिक भाइयों, अगला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अवतार फिल्म से।

सैनिक भाइयों, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत था। रचना इंदिवर की थी और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। अब सुनते हैं शैलेंद्र की शब्द रचना को शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। आवाज़ है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अदालत फिल्म का ये गीत था। रचना राजेंद्र कृष्ण की थी और संगीत था मदन मोहन का। इसी गीत के साथ अब आज का कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न करने की नरेश चंदेल को दीजिए इजाज़त। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, अब से लेकर 2 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।
1: सेवा विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

0: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा आप चलें, थोड़ा हम चलें और इसी तरह से सुरीला सफर कार्यक्रम की मंजिल को तय कर लें। गीत संगीत के इस दिलचस्प सफर में होते हैं आप, हम और विविध भारती साथ साथ। श्रोताओं, आज बहुत से श्रोताओं ने हमारे गीतों को भी पहचाना है, शब्दों को भी पहचाना है जो हमारे टेक्स्ट या इबारत में लिखे हुए हैं। हमारे नए श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, आज की इबारत अब एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ भी लिया है, हमारे रेडियो श्रोता भी इस इबारत को सुने और अंदाजा लगाएं कि आज कौन से गीत हो सकते हैं। आज रास्ता पूछा जो आईने से, आईना यूं ही बात करने लगा, मासूम सा चेहरा जरा बता उस जुल्फ की मानी, वो जो रंग महल में छुप गया कहीं, बता मेरा हम सफर कौन है बता, एक चेहरा आईने में उभरने लगा, वही कजरा वही गजरा वही प्यार में दिलदार का इंतजार, कभी मोहब्बत कभी लड़ाई, आज ये दर्पण देखती रहो तेरा हुस्न रहे आबाद, हाँ एक उम्र के बाद खुद से खुद को प्यार हुआ तो आईने में मेरा ही चेहरा बन तैयार हुआ, होता है दो चेहरा हर चेहरे पे, तेरा हम सफर तेरा दिल ही है, ये देख मैं मुस्काई तो दर्पण ने कहा चले जाना जरा ठहरो, दिन कुछ ऐसे गुजरता है जैसे एहसास उतरता है कोई, आईना देख के तसल्ली हुई हमको इस घर में जानता है कोई। तो अब आपको अंदाजा लगाना है श्रोताओं कि कौन से गीत हो सकते हैं और क्या शब्द हैं जिन्हें आपको चुनना है। ये कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं, आपको अदाकार और अदाकारा बतानी है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
0: सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: यूं ही तुम

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। इंदीवर के बोल थे राजेश खन्ना और मुमताज़ पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत केवल एक संवाद नहीं बल्कि स्वयं से स्वयं की मुलाकात की एक मुकम्मल दास्तान है। इन पंक्तियों में आईना महज कांच का एक टुकड़ा नहीं बल्कि वो एक गहरे दोस्त, एक मार्गदर्शक और सच्चे हमसफर के रूप में उभरता है। जब दुनिया की भाग दौड़ में इंसान खुद को भूल जाता है तब आईना उसे ठहराना सिखाता है। पंक्तियों का अंत जिस सुकून के साथ होता है वो अद्भुत है। चले जाना जरा ठहरो, आईने का ये कहना दिखाता है कि खुद के साथ बिताया गया वक्त कितना कीमती होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के इस दौर में जहां हर कोई अनजाना है वहां आईने में खुद को देखकर ये इत्मीनान होना कि कोई तो है जो मुझे गहराई से समझता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के शब्दों से लगता है कि कार्यक्रम में कुछ दिलचस्प पहेलियां भी होंगी, तो मैं उत्सुक हूं कि सुरीला सफ़र में कौन कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। जी हाँ, तो आप सुनिए कार्यक्रम को, बिल्कुल पता चलेगा। और आप भी बताएं हमें कौन कौन से गीत आज शामिल हो सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठ ना मनाना और बीते हुए रिश्तों की परछाइयाँ, अंततः आईना एक ये एहसास कराता है कि सच्चा हमसफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं दिल का दिल और अपनी पहचान है। उम्र के एक पड़ाव पर व्यक्ति जब स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है तब उसे अपने भीतर ही संपूर्णता दिखाई देने लगती है। अब दर्पण केवल चेहरा ही नहीं दिखाता बल्कि मन के भावों और जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब भी बन जाता है। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से गीत हैं श्रोताओं। वैसे आईना तो आप भी देखते हैं, खरीदते भी हैं, क्या आपने कभी इसकी डिज़ाइन पर ध्यान दिया है या आपको जब आप इसे ख़रीदते हैं तो इसकी डिज़ाइन पर कितना ध्यान देते हैं, कितना आप सोचते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह से उसे और सुंदर बनाता है। तो आप हमें आईने की डिज़ाइन के बारे में और अपनी पसंद के बारे में ज़रूर लिखें। वैसे भारत में देखा जाए तो बहुत सारे किले ऐसे हैं, बहुत सारे महल ऐसे हैं जहां शीश महल भी हैं। तो ऐसी कोई बात अगर आपको याद आती है, आपने देखा है कहीं, तो आप हमें ज़रूर बताएं। वैसे शीशे के लॉकेट भी होते हैं और चश्मा भी।

माला सिन्हा और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत की डिटेल आपको लिखनी है श्रोता कि गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लाल किले के दीवान खास में स्थित शीश महल में देखे हैं, गाइड ने मशाल जलाकर चारों ओर देखती आग देख दंग रह गए थे। जी हाँ श्रोताओं, बहुत सारे शीशे पहले महलों में लगाए जाते थे और बड़े बड़े जो कमरे होते थे उसमें लगाए जाते थे, वो इस वजह से कि जब एक छोटी सी मशाल भी जलाई जाए या मोमबत्ती भी रोशन की जाए तो उससे सारा महल रात में जगमगा उठे, तो इस वजह से शीशे लगाए जाते थे। वैसे शीशों पर बड़ी कारीगरी भी की जाती थी, आपने ताजमहल में भी देखा होगा, वैसे बहुत सारे तो अब हैं नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना एक ऐसी वस्तु है जिसमें पारा लगने के बाद अपना चेहरा दिखता है और पारा हटने के बाद पूरी दुनिया की हकीकत का असली चेहरा हमारे सामने रख देता है। जी हाँ, अगर पारा न चढ़ाया जाए इस पर तो इस पर शक्ल नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कहिए आईना या फिर दर्पण पारदर्शिता के साथ आत्मनिरीक्षण करने का संदेश देता है, हमारे वास्तविक बाहरी रूप को दिखाते हुए हमें अंदर झांकने को भी बोलता है। इसलिए तो कहा जाता है कि दर्पण झूठ ना बोले, हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वापस मिलेगा। बाहरी रूप संवारने के साथ साथ मन या दिल के अंदर रहे को विचार को संवार कर दूर करने की भी जरूरत है। जी हाँ श्रोताओं, वैसे एक बात भी है कि आईना जितना दिखाता है उससे ज़्यादा कहीं कुछ छुपा भी लेता है, और तभी तो हमारी इबारत में दिल के बारे में भी लिखा है कि वो दिल है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं, और इसी का असर हमारे चेहरे पर होता है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दुनिया के सामने मुस्कुराते मुस्कुराते थक कर इंसान अकेले में हार जाता है तो आईना वो दोस्त होता है जो उसके बहते हुए आंसुओं को बिना किसी शिकायत के कबूल करता है। दुनिया की नज़रों में भले ही हम खुद को छुपा लें पर अपनी ही नज़रों से नजरें मिलाना सिर्फ आईने के सामने मुमकिन है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कांच को भी दर्पण में ढालने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है, जिस तरह कांच अपनी मूल पहचान पारदर्शिता को थोड़ा बदलकर दर्पण बनाता है और तभी वह खुद का असली रूप देख पाता है, उसी तरह इंसान को भी समझदार और परिपक्व बनने के लिए अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना पड़ता है। शीशे के परिधानों को लेकर आप कुछ लिखना चाहें तो ज़रूर लिख सकते हैं।

काजल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। आपको कलाकार बताने हैं इस गीत के, और अगले गीत में भी आपको कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचाननी है, गीतकार बताना है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमारे ग्वालियर में हर साल व्यापार मेला लगता है। उसमें एक हॉल में कई प्रकार के शीशे लगे होते हैं, उनमें किसी में मोटे पतले या फिर अलग अलग तरह के मुंह बनकर सामने आते हैं, तो उसे देखकर बड़ी हंसी आती है। जी हाँ, ये तो है, लेकिन शीशे के परिधान भी होते हैं श्रोताओं। वो आपको कितने पसंद हैं और कहाँ से आप ख़रीदते हैं, जहाँ आपने जहाँ भी ख़रीदा होगा, जहाँ से भी ख़रीदा होगा, वो एक ख़ास नगरी होगी। वैसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी किसे कहते हैं, और क्या आपने यहाँ कभी ख़रीदारी की है? एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि एक गीत है जो 60 के दशक की एक मकबूल फिल्म का है, उसमें बहुत सारे शीशे दर्शाए गए हैं। आपको वो फिल्म, वो अभिनेत्री पहचाननी है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाला सुरीला सफ़र कार्यक्रम में कुछ गीत नैनो में दर्पण है। दर्पण के इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग गीतों का जिक्र है श्रोताओं, और ज़रूर दर्पण के भी गीत हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हुस्न उफनती हसरतों उमंगों तरंगों का जिक्र है। जब इश्क की अरमान लिए दिल एक हम सफ़र हमराही और हमराज की चाहत रखता है, जो उसके दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफ़र का हम सफ़र बने। हुस्न और इश्क के ताने बाने में बुनी हुई तड़प दर्शाती खूबसूरत इबारत इश्क की इबारत है। संगीत में सफ़र की प्रेम गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोतागण भी बेकरार हैं। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण के बाद देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया।

गया जिसमें प्यारी सी सारिका जी गा रही हैं, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है। आईना हर देखने वाले को सच ही दिखलाता है, देखने वाला आईने में क्या देखना चाहता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है आईना भी उस रूप का सच दिखाता है, पर आईना

आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है। आईना हर देखने वाले को सच ही दिखलाता है। देखने वाला आईने में क्या देखना चाहता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है आईना भी उस रूप का सच दिखाता है। पर आईना

जीवन के दिल के अलग अलग परिदृश्य हैं श्रोताओं, जो गीतों में ढलकर हमारे सामने आए हैं, और यही तो आईना दिखाना चाहता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म के बारे में, जो हमने सवाल पूछा था मुगले आजम फिल्म का, वो गीत प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उसमें बहुत सारे शीशे जो हैं वो बेल्जियम ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं। मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत है। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को कांच नगरी यानी ग्लास सिटी कहा जाता है। इसे चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देश में कांच की चूड़ियों और कांच के अन्य सजावटी सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये शहर आगरा के पास स्थित है। जी हाँ, और भी शीशे को लेकर बहुत सारी जो हैं बातें हैं, और बहुत सारे शहर हैं श्रोताओं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं और जो व्यापार में भी लाई जाती हैं, यानी जिनका जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। और शीशे के जो गहने होते हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ एक मीनाकारी और कुंदन के तरह का बनाया जाता है जिसमें मीनाकारी होती है। तो ये पारंपरिक जो ज्वेलरी है जो है वो राजस्थान के एक शहर में बनाई जाती है। क्या इस शहर के बारे में आपको पता है, जहां कुंदन और मीनाकारी का काम होता है। एक हमारे श्रोता लिखती हैं कि शीशे की एक सुंदर नाजुक वस्तु यानी आईना दर्पण, जो किसी भी चीज़ का सटीक प्रतिबिंब दिखलाता है, सजना संवरना, खुद को स्मार्ट दिखना रखना, ये काम दर्पण की सहायता से आसान बन जाते हैं। मन का दर्पण सच्चाई का प्रतीक होता है, जो आत्मबोध के साथ नकारात्मकता से बचाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है।

0: तो दर्पण जब घर में रखा जाता है तो बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है श्रोताओं, जैसा कि हमारी इन श्रोता ने लिखा है। तो क्या आप दर्पण को कहाँ रखना है इस बारे में भी ध्यान देते हैं तो ज़रूर बताइए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना तो वही रहता है मगर चेहरा हर रोज़ बदल जाता है, कभी थका हुआ, कभी बिखरा हुआ, तो कभी संवरा हुआ। ये सच है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता लेकिन पूरा सच भी नहीं दिखा सकता। आईना चेहरे की झुर्रियाँ तो दिखा देगा पर चेहरे के पीछे की थकान नहीं मुस्कान तो दिखा देगा पर उसके पीछे छुपे दर्द को नहीं बता सकता। एक और श्रोता ने लिखा है, वस्तुओं में एक आईना ही है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की ग्रहणशीलता रखता है। पूरी निश्चलता के साथ आईने की जो सबसे बड़ी खूबी है, जहाँ से जो मिला उसे उसी रूप में लौटा देता है। इसलिए तो कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उम्र दर उम्र और बदलते वक्त के दो ही साक्षी होते हैं, पहला समय और दूसरा आईना। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते मगर सच यही है, आईना अपनी मौजूदगी में हमें खुद से मिलने की आज़ादी देता है। एक केवल उसी के पास साहस होता है तुमको तुमसे रूबरू कराने का। आईना हमारे जीवन रथ का सच्चा सारथी है।
1: कजरा लगा के गजरा सजा के

अपना देश फिल्म का ये गीत था मुमताज़ और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में ऐसी नाजुक चीज़ की बात है जो सभी का हम सफ़र भी है, और वो चीज़ जो हमें खुद से रूबरू कराती है, और यह है आईना जो कभी झूठ नहीं बोला करता। आपके प्रतिबिंब जैसा है, आपका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही उभरता है। वक्त के साथ बदलते चेहरे से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। और कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात ज़रा आईने से भी कर लेते हैं। एक यही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर मैं जब भी अकेला होता हूँ तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि कोई तो है मेरे साथ। और उसी समय रेडियो पर बजता गीत दिल को बेहद सुकून दे जाता है। आज की इबारत पढ़ने से पता चलता है कि बड़े ही रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में। और कुछ एक गीत भी इन्होंने बताए हैं जिसमें से कुछ एक गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर ही पूरा करना है। मैं वही दर्पण, वही अपने आप को दिखाने के लिए लोग बाल काले करते हैं, चेहरे पर मालिश लगा लेते हैं, लेकिन जब वो आईना देखते हैं तो आईना असली सूरत और उम्र दिखाता है। कभी कभी हम इतने उदास होते हैं और आईने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ नज़र नहीं आता। ऐसे ही कुछ गीत पुष्प सुनकर आज सुरीला सफ़र कार्यक्रम पूरा करना है।

इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रास्ता आईना मासूम चेहरा जुल्फ रंग महल हम सफ़र गजरा गजरा और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। दर्पण भी है, हुस्न भी है, ज़रा ठहरो मोहब्बत दिलदार, तो ये सारे शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है आईने में देख कर खुद को मुस्कुरा देते हैं वो उस और उस मुस्कान पर न जाने कितने दिल हार जाते हैं। तुम्हारी आंखों की चमक के आगे आईना भी फीका लगे, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारी सूरत बनाई है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इबारत को लिखना चाहा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत को ध्यान से पढ़ने पर ये मुख्य शब्द निकल कर आते हैं जिन पर गाने आधारित हो सकते हैं, आईना चेहरा जुल्फ हम सफर, और बहुत सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी बात, दर्पण में दिखने वाला अक्स तो कुछ पल साथ रहता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिबिंब लोगों के दिलों में बरसों तक चमकता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं आज की इबारत आत्म मंथन और प्रेम का सुंदर संगम लगती है। आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बल्कि दिल के भीतर छिपे एहसासों, यादों, इंतजार और मोहब्बत को भी सामने ले आता है। ऐसा लगता है जैसे आज का सुरीला सफर हमें अपने ही दिल से मिलने, मुस्कुराने और जीवन के सबसे सच्चे हम सफर अपने आप को पहचानने की ओर ले जाएगा। जी हाँ श्रोता, और यही सब बातें जो हैं, कई बार हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने दिल से पूछते हैं, और इन्हीं सब बातों का जिक्र आज गीतों के जरिए आपके सामने आया है। कभी कभी तो आईने के सामने खड़े होकर हम बातें भी करते हैं, कभी अपने आप से कुछ कहते हैं तो कभी अपने आप से लड़ भी पड़ते हैं।

वैजंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लीडर फिल्म से। शकील बदायूनी का लिखा नौशाद का संगीत था, जिसके पहले आपने सुना मेरे महबूब फिल्म का गीत जो साधना पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आईना में साफ दिखता नहीं है तो आईना साफ करने के साथ साथ एक बार अपने ऐनक के ग्लास को भी साफ कर देखें। हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, एक बार अपने अंदर भी झांक लें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में आईने की बात है। आईना हर किसी के चेहरे की सच्चाई बयां किया करता है और इस दिल की भी उपमा चेहरे के समान ही है। एक चेहरे की हकीकत को यथा योग्य दिखाने वाले उस आईने को बाहर आईने के समान अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हृदय रूपी आईने के कृत्य उस आईने के मन दर्पण की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह समर्थ हुआ करते हैं। और ऐसे ही अभिव्यक्ति को जो है वो बता रही है ये इबारत। जी हाँ, और आईना बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है। श्रोताओं, ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं और अगला गीत भी बिल्कुल वैसा ही है। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना मनाना, अपने और बीते हुए रिश्तों की परछाइयाँ। अतः आईना एक एहसास कराता है कि सच्चा हम सफ़र कोई और नहीं बल्कि स्वयं का दिल और अपनी पहचान है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है, कुछ छुपाता नहीं, सामने लाता है आईना। कुछ गीत इन्होंने लिखा है, आईना वही रहता है जो चेहरे बदल जाते हैं। वैसे कांच की बात अगर करें श्रोताओं, जिससे आईना बनता है तो इसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, फूलदान भी बनते हैं, और एक ज़माना था जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हम सब ख़रीदा भी करते थे। कांच के खिलौनों की अगर कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे शीशे कई सारे ऐतिहासिक महलों में लगाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप हमें ज़रूर लिखें। और इस गीत को पहचाने अदाकार बताने हैं आपको। कई बार दर्पण देखते देखते देर भी हो जाती है, और ऐसा ही ये गीत है।

तनुजा और राजीव पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, मुकेश की आवाज़ थी, नीरज के बोल थे, रोशन का संगीत था। शीश महल जो आमिर का किला है श्रोताओं, उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से, बड़ी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। 1727 में जिसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानी महल में यहाँ आप देख सकते हैं कि तारों को देखने के लिए दीवारों और छतों पर हजारों दर्पण लगाए गए थे, जो एक दिए की अगर रोशनी की बात करें तो उससे भी जगमगा उठते थे। और अब ये गीत आप सुनिए और बताइए कि ऐसा लॉकेट आपके पास भी था क्या? इस लॉकेट में किसकी सूरत या शक्ल नजर आती है?

शालीमार फिल्म का ये गीत आपने सुना, ज़ीनत अमान और धर्मेंद्र भी इसमें नज़र आते हैं। लॉकेट में जो एक टूटे शीशे में नज़र आती है वो धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कांच का पेपर वेट बहुत सुंदर लगता है, कांच के दो तीन फ्लावर पॉट हैं हमारे घर में, कांच के और भी सुंदर डेकोरेटिव पीसेज हैं, पर बस डर लग रहा है कि टूट ना जाए। जहाँ टूटने का तो ख़तरा रहता है, ऐसा ही दिल भी है और जो शीशे का ही होता है। तो इस बारे में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कांच का बना हुआ पहले दो चिड़िया का सेट आया करता था, जिसमें वो बीच में रखे एक बर्तन में एक के बाद एक अपनी चोंच डुबोती थीं, अब वो नहीं मिलता। एक और श्रोता ने लिखा है कि जयपुर के आमेर किले के अंदर मशहूर शीश महल है, कहते हैं इस शीश महल के दर्पण विदेश से मंगवाए गए थे, जी हाँ बेल्जियम ग्लासेस हैं इसमें। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग हम स्त्रियां अधिक करती हैं सजने संवरने के लिए, शायद इसीलिए हम स्त्रियों को टोका जाता है कि हम सजने संवरने में बहुत समय लगाती हैं।

अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत है, आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि, दीपावली और शादियों के दौरान शीशे के काम वाला कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध चनिया चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मिरर वर्क के अधूरे माने जाते हैं। आधुनिक समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पश्चिम पहनावे जैसे जैकेट, कुर्तियाँ, स्कर्ट, बैग और होम डेकोर के में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है।

राज कपूर और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड। मुकेश और शारदा की आवाजें थी। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है और यही है आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: capitalizing on their chances. For Turkey, competing in their first World Cup in 24 years, the much-anticipated return to football's biggest stage ended in disappointment. Earlier in the day, Scotland moved to the top of Group C with a hard-fought 1-0 victory over Haiti in their Group C opener in Massachusetts. With this, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in a Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership will be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2-3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज यूट्यूब पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे कोड़ो पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 बजे हैं। अब से लेकर 3 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।

0: हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जो शहीद

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: शागिर्द फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे।
1: राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले का गया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
2: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजने को हैं आकाशवाणी शिमला से। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि देश में एम्स की संख्या 1 से बढ़कर 23 हो गई है। वहीं ई संजीवनी, कोविन और यूविन जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही हैं। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को कल 15 जून को शपथ दिलाई जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। कल शपथ समारोह जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चंबा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सोलन और कृषि मंत्री चंद्र कुमार कुल्लू में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर, जबकि आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा हमीरपुर में शपथ दिलाएंगे। जिला स्तर पर होने वाले शपथ समारोह कार्यक्रमों के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस का विषय मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं रखा गया है। सुरक्षित रक्त के महत्व के बारे में जागरूकता लाने और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस अवसर पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सोलन जिले के अर्की में विशाल दंगल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मान व प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की है। संजय अवस्थी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने और उनके शारीरिक विकास में खेल गतिविधियां अहम भूमिका निभा रही हैं। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना है। लाहौल स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शांशा के एक छात्र व प्रतिभाशाली खिलाड़ी ऋषिक रयांग का चयन प्रदेश की 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की एथलेटिक्स टीम में हुआ है। उन्होंने बिलासपुर के लुहणू मैदान में हुए राज्य स्तरीय ट्रायल में जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: सितंबर माह में देहरादून में होने वाली नॉर्थ जोन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले भी वे अंडर 17 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की ओर से खेल चुके हैं। ऋषिक की इस उपलब्धि पर उनके अभिभावकों, प्रशिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। उनकी सफलता को लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: ऊना जिला में पिछले 3 वर्षों में 9,393 किसान राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने की दिशा में तत्परता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर वृद्धि की नीति ने जिले में सकारात्मक बदलाव की नींव रखी है। उपायुक्त के अनुसार प्राकृतिक खेती के बढ़ते दायरे से जल, मिट्टी और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिल रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: सामयिक चर्चा के बाद समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र, 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत का दृष्टिकोण। वाचक स्वर नविता चौहान।
0: केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं पर केंद्रित कई पहल शुरू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के आधार पर सरकार ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाई, उच्च शिक्षा को मजबूत किया और कौशल विकास व रोजगार के अवसर बढ़ाए। भारत के स्टार्टअप तंत्र में भी इजाफा हुआ, जिसमें 2,03,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप शामिल हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, समावेशी कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के युवा अमृत पीढ़ी के रूप में उभरे हैं और विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान दे रहे हैं। अपनी लगभग 65% आबादी के 35 वर्ष से कम उम्र के होने के कारण भारत अपने इतिहास के एक अहम मोड़ पर है। सरकार इस जनसांख्यिकी लाभांश की अपार क्षमता को पहचानती है। पिछले 12 वर्षों में देश ने युवाओं के साथ सरकार के जुड़ाव के तरीके में एक बुनियादी बदलाव देखा है। ये दौर भारत के युवाओं को राष्ट्रीय विकास की ताकत में बदलने के लिए किए गए व्यवस्थित और परिवर्तनकारी प्रयासों को दर्शाता है। ये बदलाव शिक्षा, कौशल विकास, खेल और उद्यमिता सहित हर क्षेत्र में दिखाई देता है। युवाओं को अब केवल निष्क्रिय लाभार्थी नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें अमृत पीढ़ी के रूप में पहचाना जाता है। वे विकसित भारत 2047 के मुख्य निर्माता और सह रचनाकार के रूप में उभरे हैं। पिछले दशक में युवाओं के विकसित होने में भारत के नजरिए में काफी बदलाव आया है, जो युवा और गतिशील आबादी की बदलती आकांक्षाओं और जरूरतों को दर्शाता है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 ने देश में युवाओं के विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया। इसमें 15 से 29 साल के लोगों को युवा माना गया और शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य, खेल, सामाजिक भागीदारी और सशक्तिकरण जैसे अहम क्षेत्रों की पहचान की गई। इसका मुख्य जोर पहुंच, समावेश और संस्थागत मजबूती पर था। इसी बुनियादी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने हाल के वर्षों में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास का विजन पेश किया है। इसमें युवाओं को सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों का लाभार्थी के तौर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय साझेदार के तौर पर देखा गया है। हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय युवा नीति 2025 का ढांचा भविष्य के लिए जरूरी कौशल, उद्यमिता, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी, डिजिटल भागीदारी और टिकाऊ विकास जैसी उभरती प्राथमिकताओं पर और जोर देता है। हाल ही के वर्षों में शिक्षा के प्रति भारत का नजरिया काफी बदला है। अब ध्यान सिर्फ पहुंच बढ़ाने से हटकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो गया है। शिक्षा अब शहरों तक ही सीमित ना रहकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही है, ताकि सभी को समान अवसर मिल सकें। भारत के युवाओं के लिए सर्वांगीण और भविष्य के लिए तैयार करने वाली शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी बदलाव का मुख्य आधार है। ये देश भर के हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार

0: की गई पहली व्यापक शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा तक पहुंचने और उसे देने के तरीके में बुनियादी बदलाव किए हैं। भारतीय युवा अब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के जरिए सशक्त हो रहे हैं जो ज्यादा सशक्त, डिजिटल रूप में सक्षम और नवाचार पर आधारित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने एक मजबूत डिजिटल लर्निंग व्यवस्था बनाई है। स्वयं प्रभा, पीएम ई विद्या और दीक्षा टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल कंटेंट और ई संसाधनों के जरिए सीखने के अवसरों को और बढ़ाया है। अकेले दीक्षा में 135 भाषाओं में 3,66,000 से ज्यादा ई कंटेंट संसाधन मौजूद हैं। उच्च शिक्षा के स्तर पर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल ने 7,414 संस्थानों में अकादमिक और शोध संस्थानों तक पहुंच बढ़ाई है, जिससे लगभग 99 लाख लोगों को फायदा हुआ है। नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब बनाए हैं, जिनसे 1,01,00,000 से ज्यादा छात्रों को मदद मिली है और उभरती तकनीकों में 16,00,000 से ज्यादा परियोजनाओं के विकास में मदद मिली है। इसके अलावा 72 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स ने 6,700 से ज्यादा स्टार्टअप्स को समर्थन किया है और 32,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा करने में मदद की है। 2014 से युवाओं के लिए भारत की उच्च शिक्षा से जुड़े मूलभूत ढांचे का भौतिक विस्तार काफी बड़ा और रणनीतिक रूप से किया गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। ये
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:10 हुए हैं। अब से लेकर 5 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।

कमाल अमरोही की रचना थी गुलाम मोहम्मद की तर्ज, लता मंगेशकर की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को पसंद किया अनिल इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद जफ़ी और लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। ज़िला अहिल्या नगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाज़ें थी। अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। इस गीत के साथ ही आवाज़ का मनचाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव 5 गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूं।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है, पांडवों ने अपनी धन संपदा राज सब कुछ द्यूत में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं दूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था। शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों छुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम?
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
1: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं, उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
0: महाराज।
1: हाँ गांधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक है, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज है। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
1: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
0: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
1: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
0: ईश्वर कल्याण करे।

0: आज युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं ये निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज। जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ,

चित्रसेन, उपचित्र, सुचारू, चित्राक्ष, नंद और उपेंद्र मारे गए।

0: राज दुर्मुख दुर्जय दुष्कर्ण शत्रुंजय बिंद
1: Oh, my God.

गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रहेगी।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना। सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु क्या?
1: परंतु कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर।
0: बस बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई। सब वेदनाएं सो गई। दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर ढोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोंछो कांधारी, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो उठो।
3: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
3: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसरों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
3: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहां। राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
0: नहीं कृष्णा, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
3: देवी गांधारी,
0: कृष्ण, मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देखकर जिएंगे, बताओ।
3: मुझे क्षमा करो माता।
0: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
3: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
0: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ। मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा और संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी? हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ?
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वायु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है, उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो, एक ज्योतिहीन के गले बदने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद? उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृकुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ?
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गुश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूं गांधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना?
1: कही थी।
0: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी? आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी?
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी। तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? उसमें अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आपने
0: कुरु वंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति चली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए गांधारी कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ, प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय। इसीलिए वो सौ होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी वे नहीं, हम हैं महाराज, हम हैं।
0: गांधारी, देखो, मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
0: गांधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई है।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहाँ तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ।
1: महाराज।
0: हाँ गांधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए, रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए, इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल बढ़ रहा है, आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है तो उसका परित्याग क्यों किया जाए। चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह चलो।
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिक

0: कभी धूप तो कभी छांव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहाँ जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
2: वो तो बहुत पॉपुलर था।
3: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे है और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
2: बिल्कुल,
3: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
2: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
3: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
2: अच्छा।
3: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
2: अच्छा।
3: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
2: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।
3: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी, फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब
0: हाँ।
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी।
0: हाँ।
1: और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो? मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं, जो
0: अच्छा।
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जागृत है। जी
1: कि
0: जी
1: भाई ये काम आप क्यों करेंगी।
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
1: मैं तो
0: आपकी भी
1: बड़ी हो
0: अपनी
1: गई थी।
0: दुनिया बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया,
0: भीतर
1: वो फिर
0: होता है
1: गर्व
0: वो
1: महसूस करने
0: महसूस
1: लगे।
0: किया। मितुल जी, कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था, और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता, और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा।
0: जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
1: हाँ,
0: ने?
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं, और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है कि
0: खूबसूरती के
1: मेरे
0: साथ
1: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो
0: बोलो
1: तुम
0: तुम
1: कौन
0: कौन
1: हो,
0: हो।
1: बोलो तुम
0: आहा,
1: कौन हो।
0: क्या बात है,
1: हाँ,
0: क्या बात
1: तो
0: है
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना
0: जी।
1: सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
0: तुम
1: तुम।
0: थे।
1: हाँ,
0: आहा।
1: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा
1: क्या
0: प्यार
1: मेरा
0: पसंद है
1: प्यार
0: तुम्हें?
1: पसंद है। तो
0: बहुत
1: ये भी कितना सुंदर सुंदर से गीत है,
0: बहुत स्वीट।
1: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
0: हर पल के गीत है ये,
1: हर
0: हर
1: पल के। तो
0: मौके
1: ये
0: के गीत है।
1: रोमांटिक गाने भी उन्होंने
0: जी
1: लिखे,
0: जी
1: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के बिहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत, रुमानियत गहरी गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि, जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रोमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रोमानी कविता उनकी कलम से निकली, रोमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े

0: खड़े खड़े लोग रोए हैं,
1: जी
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहाँ खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया,
1: जी
0: कि वो भी ऑडियंस में थे।
1: जी और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
1: जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: हाँ, जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए,
1: चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे, और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है, तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीज़ें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे, और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफ़ेद वाले जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफ़ेद जामुन, हाँ काले नहीं, सफ़ेद
0: सफ़ेद, हाँ,
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल या से कुछ बोलते हैं, जो भी होगा, उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना, तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है, और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है, और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे, ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप,
0: अच्छा,
1: इतनी मजबूत है,
0: क्या बात है,
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है,
0: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी,
0: उसको खड़ा किया है।
1: हाँ
0: जी मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं, और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई, और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
0: जी,
1: और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं, और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी,
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर कर के स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी,
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
0: जी,
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया, तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना लक्ष्मी के,
0: नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में,
1: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
0: ये तो आपने बचपन की बात बताई, जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी।
1: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, नहीं मुझे वो मज़ा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है. तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
0: जी,
1: बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है. मैंने बोला हाँ वो तो है. तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं,
0: हाँ
1: उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है. मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ. बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए. और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए. मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं. क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था. उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए. कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए, मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में. तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है आपके, क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ. जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी.
0: अच्छा
1: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई.

0: जी
1: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो
0: जी
1: उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
0: मकसद मिल गया
1: मकसद मिल
0: आपको।
1: गया,
0: जी
1: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब गुरु बनते हैं ना तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और
0: बिल्कुल
1: आपका जीवन बदल जाता
0: बदल
1: है।
0: जाता है।
1: सुख

0: तो कभी था।
1: मिथुल जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही।
2: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
1: अच्छा,
2: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना,
1: ड्राइंग
2: करते।
1: तो आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
2: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास, आज खजाना है।
1: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
2: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा
1: है,
2: अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
1: ऑयल पेंटिंग
2: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है। कहीं पर आप बंधते नहीं है। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहाँ बंध जाते हैं।
1: जी।
2: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर।
2: वही तो, वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने
2: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
1: अच्छा जी।
2: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी जी जी।
2: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरी कला है, मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है। तो लोग आते हैं, देखते हैं, अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है,
2: नहीं।
1: अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है।
2: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहाँ पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
1: बिल्कुल,
2: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
2: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की
1: बात कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
2: जी,

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं, या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा हैं, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास, जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में ख़त्म करना है तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी,
1: तो
0: वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है,
1: मॉडर्न आर्ट
0: है, इस तरह का, सभी तरह के आप
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको आप अपने पेंटिंग बनाइए।
0: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं
0: बहुत सुंदर।

0: मितुल जी, आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या-क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं। जो
0: अच्छा,
1: खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है,
0: हाँ
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं। जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं,
0: हाँ
1: छोटी छोटी गिलहरियां
0: वो
1: हैं,
0: आपके घर के
1: वो
0: आजू बाजू रहती हैं।
1: रहती है और रोज खाने के लिए आती है। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है।
0: जी।
1: और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर
0: ना
1: दे रे
0: देरे
1: झोली।
0: चोली।
1: तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो
0: ना
1: ये
0: तो
1: सब
0: भाई।
1: भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही हैं,
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही
1: नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियां बहुत ही तेज
0: तेज
1: है, तगड़ी है, बड़ी,
0: है।
1: और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी, ये तो
1: जी
0: बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी हैं, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है।
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू
0: अच्छा
1: है ना, जैसे ब्राउनी है,
0: हाँ,
1: ब्लैकी
0: उनको
1: है,
0: पता ही उनके नाम
1: हाँ
0: है।
1: हाँ सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिन टिन है तो दूसरा है चिन चिन, जैसे चुन चुन भी है। सो किटकैट भी है।
0: अच्छा,
1: सो
0: ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती
1: हाँ
0: हैं?
1: हाँ मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है कि अब बहुत हो गया।
0: जी, कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है।
1: पूरा पूरा जंगल है और बहुत
0: जी।
1: मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
0: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत
1: जरूर
0: भर दे रे
1: सुनवाइए,
0: चोली।
1: जरूर।

0: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल
1: जी
0: वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ।
0: जी
1: और मैं ये कहना चाहूँगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए,
0: जी
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए।
0: जी बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी, आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनके जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
0: जी,
1: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से। और आज की बातचीत बस यहीं तक, अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति सहित कई प्रमुख व्यापारिक नेता भी उपस्थित थे। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों आज भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25,00,000 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेओ को 5-1 से हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे भजन संध्या। शाम 5:30 पर कार्यक्रम रहेगा युव मंच। शाम 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:05 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम लेकर, सफर सुहाने, गाने नए पुराने। श्रोताओं, आपको बता दें आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम पाकिस्तान मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चांदनी रातें, और देर रात 11:00 आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए भजन संध्या। भजन संध्या सुनने वाले सारे श्रोतियां जो आहां दी राम राम। श्रोतियों, आज दिस शाम संध्या च मैं रहना तुहां कन्ने, तुहां दी अपनी रेडियो दोस्त नेहा मिश्रा।

0: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र अगने तुहां इस वक्त सुना दे भजन संध्या। हरि नाम दी गंगा च डुबकी लगाई ने ते दिखा, मना दे सारे संशय सारे कलेश जैसे एकदम मिटी जाने। जिथे जे जुटी जांदे सारे भगत, तिथे गूंजदा हरि दा नाम, साई बनी आंदा साक्षात चारों धाम। आवा सुनदे हन इस कार्यक्रम दा अगला भजन।

ना धन चाहिंदा ना दौलत चाहिंदी, प्रभु जो तो बस भगतां दी सच्ची भक्ति चाहिंदी। सुर कने ताल ते सजरी शाम चाहिंदी, जिथे जे मिली ने सारे भगवान दा सुमिरन करी सकन। आवा सुनदे हन इस कार्यक्रम दा अंतिम भजन।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है युवाओं के लिए कार्यक्रम युवमंच।

युवा मंच कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप तो जानते हैं कि युवा मंच कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ जानकारियां लेकर आते हैं, वहीं कुछ सकारात्मक बातें भी रहती हैं। एक बड़ी ही सुंदर पंक्ति के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। अगर तनाव आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है तो उससे डरने की बजाय उसे अपनी प्रेरणा बना लें। जी हाँ युवा श्रोताओं, हर तनाव बुरा नहीं होता। माना कि कभी हमें चिंता रहती है कि अब भविष्य में हम कौन सी डिग्री हासिल करें जिससे बढ़िया नौकरी मिल सके, माँ बाप का पालन पोषण कर सकें, उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकें, या ऐसी कौन सी नौकरी की तलाश करें जो हमें अच्छी आय दे सके। इस तरह का तनाव जो है वो बना रहता है, लेकिन हर तनाव बुरा नहीं होता। तनाव को प्रभावी ढंग से संभालने की शुरुआत उसे समझने से होती है। जब आप ये पहचान लेते हैं कि आपको तनाव किन कारणों से होता है और उसके शुरुआती संकेत क्या हैं और आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, तो तनाव कोई ऐसी बेकाबू स्थिति नहीं रह जाती जिसे बस सहना पड़े, बल्कि वो ऐसी चुनौती बन जाता है जिसे समझदारी से नियंत्रित किया जा सकता है। इससे आप केवल चुपचाप परेशानी झेलने की बजाय तनाव के वास्तविक कारणों को पहचान कर उनका समाधान खोजने लगते हैं। कोशिश करें कि बिना सोचे समझे कभी भी कुछ ना बोलें। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ ही जाती हैं जो तनाव पैदा करती हैं, जैसे किसी का सख्त ईमेल, समय पर काम पूरा ना कर पाना या किसी मुश्किल व्यक्ति के साथ काम करना। जब हम इन स्थितियों पर ध्यान देते हैं और उन्हें नोट करते हैं तो हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सी बातें बार बार हमारे तनाव का कारण बन रही हैं। ये समझ हमें बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत होकर स्थिति को समझने और बेहतर तरीके से जवाब देने का अवसर देती हैं। अक्सर तनाव हमारे शरीर और व्यवहार में दिखने लगता है। इन संकेतों को समझने की कोशिश करें। क्या होता है, कई बार हमें खुद इस बात का इतना एहसास नहीं हो पाता कि ये जो तनाव है ये हमारे शरीर में, हमारे व्यवहार में दूसरों को दिखने लगा है। इसलिए अपने तनाव के पैटर्न को समझना ज़रूरी है ताकि हम इसके शुरुआती संकेत समय रहते पहचान सकें। व्यवहार में चिड़चिड़ापन बढ़ना, लोगों से दूरी बनाना, नींद का खराब होना या खान पान की आदतों का बिगड़ना, ये इस तरह के बदलाव दिखाई दे सकते हैं। इन संकेतों को पहचान कर हम तनाव को बढ़ने से पहले ही बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। और जैसा कि युवा श्रोताओं, हमने पहले ही कहा, हर तनाव बुरा नहीं होता। कई बार थोड़ा सा तनाव हमें बेहतर प्रदर्शन करने, ध्यान केंद्रित रखने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने तनाव के पैटर्न को समझने लगते हैं तो ये पहचानना आसान हो जाता है कि कौन सा तनाव आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और कौन सा आपको परेशान कर रहा है। सफल लोग और अच्छे लीडर दबाव से घबराने की बजाय उसे अपनी ऊर्जा और प्रेरणा में बदलना सीखते हैं। कोशिश करें अपना जो नज़रिया है उसे भी बदलें। जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है, कुछ समय निकाल कर ये समझने की कोशिश करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। साथ ही ये पहचानें कि दबाव के समय आपका स्वाभाविक व्यवहार कैसा होता है। क्या आप तुरंत समस्या सुलझाने में लग जाते हैं, शांत रहकर सोचते हैं या दूसरों का मार्गदर्शन करने लगते हैं? अपनी इन आदतों को समझकर और नए तरीके अपनाकर युवा श्रोताओं, हम तनावपूर्ण परिस्थितियों का अधिक आत्मविश्वास और प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि हर तनाव बुरा नहीं होता।
यदि कोई तनाव आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाने की ज़रूरत है। युवा श्रोताओं, अब कार्यक्रम में रुख करते हैं मनोरंजन का, और आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है? भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
0: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
1: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी,
2: हाँ,
3: आपके नाम?
4: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
5: आरबीआई कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
7: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
9: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
7: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
9: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
7: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
10: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के युव मंच कार्यक्रम में, जहां बात होती है युवाओं की, उमंगों की और हमारे समाज को बदलने वाली हर छोटी बड़ी सोच की। युवा श्रोताओं, आज तारीख है 14 जून और आज का ये दिन बेहद खास है, क्योंकि आज पूरी दुनिया मना रही है विश्व रक्तदान दिवस। जी हाँ, रक्तदाता दिवस जब भी देश पर कोई आफत आती है या किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो सबसे आगे कौन खड़ा होता है? हमारा युवा। और आज के इस कार्यक्रम का ये अगला सेगमेंट हम डेडिकेट कर रहे हैं उन हीरोज़ को जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना ये जाने कि उनका खून किसकी रगों में बहेगा, रक्तदान करते हैं और जिंदगियां बचाते हैं। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है, रक्तदान है महादान, इससे बचती है किसी की जान। चलो मिलकर हाथ बढ़ाएं, इस दुनिया को और खूबसूरत बनाएं। युवा श्रोताओं, जब भी रक्तदान की बात आती है तो हमारे कई युवा दोस्तों के मन में कुछ सवाल, कुछ हिचकिचाहट और कुछ डर आ जाते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में मिलकर इन डर के गुब्बारों की हवा निकालते हैं। लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर इतना एडवांस है कि जो खून आप डोनेट करते हैं उसकी लिक्विड मात्रा तो 24 से 48 घंटे में ही पूरी हो जाती है, और लाल रक्त कोशिकाएं भी कुछ ही हफ्तों में वापस बन जाती हैं। वहीं कुछ सोचते हैं कि डोनेशन में बहुत दर्द होता है। सच कहें तो सिर्फ एक छोटी सी चींटी के काटने जितना एहसास होता है। वो सुई का डर सिर्फ दिमाग में होता है, दिल में नहीं। और सबसे मज़े की बात पता क्या है, रक्तदान करने से आपका अपना दिल भी सेहतमंद रहता है और बॉडी में नए ब्लड सेल्स बनते हैं, जिससे आप और भी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। यानी फ़ायदा लेने वाले का भी और देने वाले का भी। श्रोताओं, रक्तदान करना एक सुपर पावर की तरह है। आप बिना कैप पहने भी किसी के लिए सुपर हीरो बन सकते हैं। लेकिन हाँ, इस सुपर पावर को इस्तेमाल करने के कुछ छोटे मोटे नियम भी हैं जिन्हें जान लेना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आपकी उम्र 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए और वजन कम से कम 45 किलो होना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम से कम 12.5 होना चाहिए। डोनेशन से पहले डॉक्टर्स आपकी छोटी सी जांच करते हैं, अगर आप पूरी तरह फिट हैं तभी आप डोनेट कर सकते हैं। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने पिछले 3 महीनों में रक्तदान नहीं किया है तो आप आज ही जाकर किसी भी अधिकृत ब्लड बैंक या कैंप में डोनेट कर सकते हैं। लड़के हर 3 महीने में और लड़कियाँ हर 4 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकती हैं। सोचिए, आपका सिर्फ 15 मिनट का समय और 1 यूनिट खून किसी माँ को उसका बच्चा, किसी बच्चे को उसके पिता या किसी परिवार को उसकी खुशियाँ वापस लौटा सकता है। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा भला। चलिए श्रोताओं, ये तो थी थोड़ी सी जानकारी आज मनाए जा रहे इस महत्वपूर्ण दिवस से जुड़ी हुई। युव मंच कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं मनोरंजन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये विज्ञापन।
7: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
7: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
9: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
7: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
9: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
7: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
11: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
3: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
11: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
3: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
11: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
12: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का युव मंच कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। रखिए अपना और अपनों का ख्याल, दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम,
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम,
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: आरबीआई कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और उनमें सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सरकार आगे भी लगातार काम करती रहेगी। प्रदेश के सभी जिलों में कल 15 जून को आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत व बचाव कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। पूर्वाभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होंगे, जो आपदा तैयारी में मौजूद कमियों की पहचान करने और उनके समाधान के सुझाव देंगे। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में एक महिला की हत्या होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में पहले नहीं सुनी गई थी, लेकिन अब आए दिन हो रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस मूकदर्शक बनकर देख रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है, लेकिन प्रदेश पुलिस सरकार के निर्देशों पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को परेशान करने, सत्ता समर्थित अराजक लोगों को सुरक्षा देने और भाजपा नेताओं के फोन की निगरानी करने जैसे कार्यों में व्यस्त है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जिस तरीके से पुलिस को अपना टूल बनाकर विपक्ष को परेशान करने में जुटी है, उसके खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के 2 दिवसीय हिमाचल प्रवास ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा व आत्मविश्वास का संचार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस प्रवास ने न केवल संगठन को मजबूती प्रदान की, बल्कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी जनता के समक्ष उजागर किया है। किन्नौर जिले के प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से करीब 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक व साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रोजाना अधिकतम 375 श्रद्धालुओं को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। रिकांगपियो से हमारी संवाददाता के अनुसार ये यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें हर वर्ष देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। नव भारत युवा संघ ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। संघ के अध्यक्ष भावन शर्मा ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और नशा व खनन माफिया भी पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं और समाज पर बुरा असर पड़ रहा है।
1: पिछले कुछ समय से पूरे हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो बिगड़ना हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, उसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय होगी? हिमाचल में सरेआम माफिया राज फैल रहा है, खनन माफिया फैल रहा है, ड्रग माफिया फैल रहा है, आखिर किसकी जिम्मेदारी तय होगी? कौन इसके लिए जवाबदेह होगा? हिमाचल के आम नागरिक खुलेआम घूमने में भी डर रहे हैं। हिमाचल की माताएं बहनें आज सुरक्षित नहीं है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसे परीक्षा कर्मयोगी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण व निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने सहित ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। इसमें नीट स्नातक पूर्व परीक्षा भी शामिल है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में वर्षा दर्ज की गई, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात भी हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6:05 हुए हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, पीढ़ियां चाहे कितनी भी बदल जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें कभी बदलती नहीं। जैसे कि अच्छा म्यूज़िक। एक ज़माना था जब रेडियो के पास बैठकर बिना हिले डुले गानों का इंतज़ार किया जाता था, और आज का दौर है जहां एक क्लिक पर पूरी दुनिया का म्यूज़िक आपकी जेब में है। लेकिन मज़ा तब आता है जब पुराने गानों की सादगी और नए गानों की एनर्जी एक साथ मिल जाए। जी हाँ, इस कार्यक्रम में ये दोनों ही आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त नेहा मिश्रा, और ये रहा आज के इस कार्यक्रम का आगाज़।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: सफर सुहाने, गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। श्रोताओं, यादों के झरोखे से कुछ पुराने नगमे आपके लिए लाए हैं। आज के दौर की धुनों से इस महफिल को हम सजाएंगे। थाम लीजिए दिल, क्योंकि यादों का ये सुहाना सफर आपको और हमें बेहद करीब लाएगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कहते हैं कि नए गाने अगर आज की धड़कन हैं, तो पुराने गाने हमारे दिल की धड़कनों का इतिहास हैं। इस सफर में ना कोई आगे है ना कोई पीछे, यहाँ तो बस सुरों का मेल है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये

0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
0: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम पाकिस्तान मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20।
2: फर्स्ट बॉल 20।
3: कुछ मुकाबले सिर्फ खेले नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता।

0: कि जैसे जैसे ये विकेट और पुराना हो गया, पिच होगी, सो इट्स अ गुड विकेट अभी बैट करने के लिए, लेकिन बाद में बोलर फ्रेंडली हो जाएगा. आई कम टू यू मोना ऑन दैट. वी सॉ बोथ द कैप्टन्स जंपिंग ओवर देयर एट द चॉइस ऑफ हैविंग चोजन टू बैट फर्स्ट टुडे, एंड गिवन द फैक्ट दैट ऑल्सो वी हैव भारती कमिंग बैक इन टू द प्लेइंग 11 फॉर अस टुडे, डू यू थिंक दैट्स एन एडेड एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ बैटिंग फॉर इंडिया?
1: डेफिनेटली यस, क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड कप की भी हम बात करें, अगर 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था, बैटर्स का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है, और यहाँ पर सबको उम्मीदें होंगी कि स्मृति मांधना हो या शेफाली हो, अच्छी स्टार्ट अगर भारत को यहाँ से मिलती है और मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारती फुलमाली को आज रखा गया है टीम में. हरमनप्रीत कौर ने अच्छे दो हाफ सेंचुरीज लगाए हैं जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे उसमें, उनका फॉर्म बहुत क्रूशियल है भारत के लिए, और ऋचा घोष हैं. तो हम कुल मिलाकर ये जो आइडिया होगा कि एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं तो 80% फातिमा सना पर निर्भर करती है. फातिमा का विकेट अगर जल्दी निकल गया तो वो क्रम्बल कैसे करते हैं वो हमने देखा है. तो यहाँ बहुत ही सही डिसीजन है, जैसे वैशाली जी ने कहा कि पहले बल्लेबाजी की, भारती को टीम में रखा, बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है इंडिया की, एक बड़ा स्कोर अगर यहाँ खड़ा करती है टीम इंडिया तो ये पहला मुकाबला है जिसको टोन सेट करने वाला मैच कहते हैं. और कागजों पर भी भारत का पलड़ा बहुत भारी है, और ये ग्रुप हमने देखा है कि कितना कठिन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी है, तो किसी भी कोताही की यहाँ गुंजाइश नहीं है. तो यहाँ आइडिया यही होगा कि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए.
2: जी हाँ बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के बीच 16 T20 मुकाबले हुए हैं, इनमें भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं. T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों टीमें 8 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत ने 6 बार और पाकिस्तान ने 2 बार मजीब मारी है. कर्नल, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब से वहाब रियाज ने कमान संभाली है पाकिस्तान टीम की, एक अटैकिंग इंटेंट नजर आया. जो जिम्बाब्वे के साथ उनकी बाइलैटरल सीरीज हुई थी वहाँ हमने देखा कि 200 से ज़्यादा स्कोर बने, लेकिन प्रैक्टिस जो मैचेस थे वर्ल्ड कप के वहाँ वो टीम स्ट्रगल करती नजर आई. क्या उस माइंडसेट से भारत किस तरह के टोटल के आसपास आज देखेगा पहले बल्लेबाजी करते हुए?
3: देखिए, अगर आप पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 4 मंथ्स में, दैट इज़ दिस ईयर, तो एक्सेप्ट फॉर द सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे वेयर दे प्लेड ऑन देयर ओन ग्राउंड, सो दे स्कोर्ड वेल. इन रेस्ट ऑफ द मैचेस, दैट इज़ इन साउथ अफ्रीका एंड ऑल्सो इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, दे हैव लॉस्ट ऑल मैचेस एक्सेप्ट वन विच दे वन. सो जनरली इफ़ यू सी देयर बैटिंग रिवॉल्व अराउंड फातिमा सना. इफ शी गेट्स आउट अर्ली, then they are scoring in the range of 120 to 130 runs. So, in wickets के ऊपर मेरे ख्याल से हम अगर batting first अभी हम कर रहे हैं, batting हमारी strong है, तो अगर हम score 170 से ऊपर कर देते हैं तो it will be a very challenging total for Pakistan and we should be able to beat them.
2: जी हाँ बिल्कुल, 2025 के बाद से फातिमा सना ने 12 मुकाबलों में 335 रन बनाए हैं, 13 विकेट भी लिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 183.06 का है.
0: जी, एंड आनंद, दिस इज आल्सो फॉर ऑल आवर लिसनर्स हु आर जॉइनिंग अस टुडे ओवर हियर, आवर कॉलिंग लाइंस आर ओपन. जी हाँ, हमारी कॉलिंग लाइंस खुल चुकी हैं, 011-2342-1084, 011-2342-1085. आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं. हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ कर्नल भूपराज सिंह, वैशाली माथुर और मोना पार्थ सारथी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. एंड नाउ टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड, वैशाली, आई विल कम टू यू. बर्मिंघम की जो पिच कही जाती है, इट्स ऑलवेज बीन अ स्लो पिच, 6.77 का यहाँ पर हमने देखा है एवरेज नेट रन रेट पर ओवर चलता है जो हम बात करते हैं. उस एंगल से हमने आज ये भी देखा कि व्हेन वी फर्स्ट वन द टॉस, हरमनप्रीत सेड दैट वी आर ब्रिंगिंग इन 3 स्पिनर्स एंड 2 मीडियम पेसर्स. फ्रॉम अ बोलिंग पर्सपेक्टिव फॉर द इंडियन साइड, आप किस तरह से देख रहे हैं आज भारत अपनी स्ट्रैटेजी लेके उतर रहा है?
2: वैशाली मैम, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, स्वागत है कार्यक्रम में आपका. नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? ढाई सौ की उम्मीद लगा रहे हैं. जी वैशाली,
4: जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिच के बारे में, बैटिंग पिच है, पाटा पिच है बिल्कुल, तो डेफिनेटली 140 से तो अबव ही जाएगा, 180 तक का टारगेट जरूर होगा भारतीय टीम का. लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स भी कोई कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि स्मृति मंधना जब उनके सामने नासरा संधु और सादिदा आती है ना, तो उन्होंने 3 मैचेस में 2 बार उनको आउट किया है. लेकिन आज

0: हमारी स्मृति मन्ना को इनसे बचना होगा, इन खुल के खेलना होगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बात करें हम स्मृति मन्ना, हरमनप्रीत कौर, हमारी दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, तो ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इनको पता है कि किस तरीके से खेलना है, कहाँ उनको लैक करके उसको इम्प्रूव करना है ड्यूरिंग द मैच. लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको भी कैसे लेके साथ चलना है. और उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो फातिमा है पाकिस्तान टीम की कैप्टन, वो उनको नी इंजरी है. सो हमारी टीम को ये पता है कि उनको नी इंजरी है, तो ये एक बेनिफिट भी हमारी टीम के लिए है.
1: जी हाँ, बिल्कुल. इस मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं खेलेंगी. आपने पाकिस्तान के कुछ स्पिनर्स की चर्चा की. 2025 के बाद से सादिया इकबाल ने 12 मुकाबलों में 14 विकेट लिए हैं. फातिमा सना के नाम 13 विकेट हैं, जबकि नाशरा संधू, जिनका आप जिक्र कर रही थी, उनके नाम 9 विकेट हैं. तुबा हसन एक और ऐसी गेंदबाज जो मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करती हैं. मुना, अगर भारतीय बल्लेबाजी की थोड़ी चर्चा करें, जिस तरीके से शेफाली फॉर्म में हैं, जनवरी 2025 के बाद 21 मुकाबलों में 677 रन उनके नाम हैं, और वनडे वर्ल्ड कप में एंट्री के बाद से लाजवाब फॉर्म कैरी कर रहे हैं. स्मृति, हम सब जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स की बड़ी प्लेयर हैं, यहाँ किस तरह का स्टार्ट देख रही होंगी, क्योंकि पिच पर काफ़ी चर्चा हो रही है, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, आते ही स्टार्ट करेंगी या कुछ ओवर देखेंगी?
2: देखिए, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाने के बाद स्मृति एक भी अर्धशतक नहीं बना पाई है लास्ट 6 पारियों में. इसके अलावा शेफाली की भी बात करें, जोहानिसबर्ग में जो 64 रन बनाए थे, उसके बाद से उनका बल्ला भी उस तरीके से नहीं चला है जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है. तो यहाँ पर क्योंकि ये विश्व कप है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, एक भी मैच में आप कोताही नहीं बरत सकते. तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो, शुरू से पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी. ये T20 क्रिकेट है, वनडे विश्व कप हमने जीता, वो अतीत की बात हो गई है. ऑलमोस्ट जो फलक्रम है टीम का वो वही है, टीम वही है ऑलमोस्ट. तो इन्हें पता है, जिसको कहते हैं ना, बीन देयर डन दैट, एक खिताब हम जीत चुके हैं, हमें पता है खिताब कैसे जीते जाते हैं. तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो स्ट्रेटजी है, जो कागजों पर बनती है, उसको मैदान पर, रणनीति पर अमल करना जरूरी होगा. और यहाँ पर चूंकि आपने बल्लेबाजी चुनी है, तो आपको शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाना होगा. और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, तो थोड़ा कैरिड अवे होने से भी यहाँ बचना बहुत जरूरी होगा.
3: राइट, एंड वी आर टोल्ड वी हैव अनदर लिसनर जॉइनिंग अस राइट नाउ विद अस. नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में. अविनाश जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? Right, I'll take that question straight to our expert, Colonel Hoopraj. Would you want to address that? Richa Ghosh coming in at number 3 is his ask or suggestion. How good or bad do you think that is in terms of placement at number 3 for Richa Ghosh over there?
4: Well, what I feel is that we've got a very settled first 4-5 batsmen, and they are experts in their position. And Richa Ghosh may not be a good option to send at number 3. Let her play at number 6 or 7 at whatever stage she comes, so that she can get good quick runs in the later part of the innings. And Harmanpreet, Shefali Verma and Mandana, they are good players. They'll, you know, manage on top along with Jemima Rodriguez.
3: राइट
1: जी हाँ.
3: आई जस्ट टेक अ क्वेश्चन विद वैशाली ऑल्सो, आपके पास आऊँगी मैं. आनंद ने अभी बहुत अच्छी बात रखी थी कि 13-3 का आंकड़ा है, 13-3 का आंकड़ा भारत के पक्ष में अगेंस्ट पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज इट्स इंडिया पाकिस्तान, बट इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेट एंड हाउ द क्रिकेट ऑफ दीज टू नेशंस हैज इवॉल्व्ड, डू यू थिंक इट इज़ नो मोर a fight or a rivalry between, if we talk strictly in terms of how the two nations today stand in terms of playing the kind of cricket they are playing?
0: I think it's a mindset. क्योंकि अगर एक प्लेयर अगर खेल रहा है, तो उसके साथ साथ हमें ना सिर्फ ये देखना चाहिए कि उसका किस तरीके की अचीवमेंट्स है, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस है उसके पास, और वो कैसे प्ले करता है, रेदर देन हम अपनी पॉलिटिक्स साइड में रख के देखें तो. एंड उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि वो किस तरह का फील्डर है, कितना अच्छी बैटिंग करता है, और वो कितना इन्वॉल्व है टीम के साथ, और वो सब फैक्टर्स भी देखे जाते हैं. और अभी मैं एक और चीज़ ज्वाइन करना चाहती हूँ इसमें, कि ऋचा घोष के बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे, तो ऋचा घोष हमारी इंडियन टीम के लिए एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो उस जगह पे खड़ी है जो जहाँ पे उनको कहीं भी भेजेंगे, किसी भी डाउन पे भेजेंगे, वो वहाँ जाके अपने आप को शो करती है. हमेशा हमने देखा होगा कि ऊपर का बैटिंग लाइनअप

0: खराब हो जाता है हमारा कभी कभी, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक ऋचा घोष ऐसी है इस टीम के अंदर जो हर दिन अपने आप को शो करती है एंड वो बैटिंग करके दिखाती हैं। और उसके साथ जेमिमा रोजर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें उनको पाकिस्तान के साथ बैटिंग करना बहुत ही मज़ेदार लगता है। और उनने जो एशिया कप में 2022 में जो खेला था, उन्होंने 53 की नाबाद बारी खेली थी उनके साथ, और वो मुझे लगता है कि वो आज उतने ही जोश में भी होंगी।
1: जी बिल्कुल, अगर हम अपने श्रोताओं के लिए भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो स्मृति मानधना हैं, शेफाली वर्मा हैं, जेमिमा रॉड्रिग्स हैं, हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान, भारती फुलमाली, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रियंका पाटिल, श्रीचरणी और क्रांति गौड़। इस टीम के साथ खेल रही है टीम इंडिया। थोड़ी बात हरमन की जाए, हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान, इनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप में 19 में से 13 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं, और 2025 के बाद से 19 मुकाबलों में 486 रन बनाए हैं। मोना एक ऐसी खिलाड़ी जो काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रही हैं, बीच में कुछ एक मैचेस में अच्छी पारियां खेलती हैं, लेकिन टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। क्या लगता है, इस बड़े मंच पर दबाव होगा उन पर?
2: देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि दबाव नहीं होगा, और खासकर अब ज़्यादा दबाव होगा क्योंकि हम वनडे में विश्व चैंपियन हैं, और उस लय को बरकरार रखने का दबाव जो होता है भारतीय क्रिकेट में हर कोई जानता है किस तरीके से कैसे होता है। हरमन की हम बात करें तो एज अ बैटर मुझे अभी भी उनकी वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग याद आती है जब अकेले दम पर उन्होंने मैच जिताया था। अभी हम बात भी कर रहे थे कि टूर्नामेंट से ठीक पहले 2 हाफ सेंचुरी लगाई है उन्होंने, अनुभव है। रवानगी से पहले एक प्रेस इवेंट में उनसे पूछा गया था कि क्या ये आपका आखिरी वर्ल्ड कप है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, यू वांट मी टू रिटायर, व्हाई? तो ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है कप्तान की, जहां आक्रामकता दिखानी होती है वहां वो आक्रामक रहती है, और मुझे लगता है हरमन वो एक धुरी है जो इस पूरी टीम को जोड़ के रखती है, और एक कप्तान के तौर पर उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है भारतीय महिला क्रिकेट में। तो मुझे लगता है कि वो दबाव ज़रूर होगा, लेकिन उस दबाव से कैसे पार पाना है उस खेल की वो अब माहिर हो चुकी है।
3: Right, and I'll come to you, Mona, just to take that question forward, because aap jawab dena cha rahe the about how India. The cricket of both the countries has evolved and whether possibly India ka cricket se zyada uch ho gaya hai compared to Pakistan ka cricket.
2: Sakshi, aapne jo sawal pucha tha ki dono desh kahan thehrte hain mahila cricket mein, ye aapka question tha, to aapko ye bhi dhyan rakhna hoga ki bhartiya team khas taur pe WPL aane ke baad se ya fir exposure ki hum baat kare to lagatar khelti aa rahi hai, aur Pakistan 2 saal mein ek ya 2 श्रृंखलाएं खेला है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है उसको तो मैं कहूंगी बेमेल ही श्रृंखला है, उसमें शायद सबसे फास्ट हाफ सेंचुरी बनाई फातिमा सना ने, लेकिन जो हार्ड टेस्ट होते हैं किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले, उनसे होकर पाकिस्तानी टीम नहीं गुजरी है। और भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ WPL, आप हंड्रेड्स में देख लीजिए, आप बिग बैश में देख लीजिए भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं, तो काफी अनुभव हो गया है बड़े मुकाबले खेलने का, और वर्ल्ड कप फाइनल तक खेल चुके हैं, तो बहुत ही फर्क है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम देखें या प्लानिंग वाइज भी हम देखें या कहां पर दोनों टीमें खड़ी हैं और बोर्ड का कितना सपोर्ट है पाकिस्तान में महिला क्रिकेट को और भारत में, तो काफी फर्क पड़ता है। आप कितने साउंड होकर उतर रहे हैं मैदान पे, वो काफी मायने रखता है। तो मुझे लगता है यहां पर निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा काफी भारी है।
1: Right. गेंदबाजी की बात करें तो श्रीचरणी पर सबकी नजरें होंगी, 2025 के बाद से 20 मुकाबलों में 28 विकेट, और दीप्ति शर्मा एवरग्रीन दीप्ति शर्मा के नाम 23 विकेट हैं, और अरुंधति रेड्डी ने 20 खिलाड़ियों को आउट किया है। श्रीचरणी की थोड़ी बात करते हैं कर्नल, काफी नई खिलाड़ी हैं, लेकिन रनों पर अंकुश लगाना हो, मिडिल ओवर्स में विकेट लेना हो, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती हैं इस वर्ल्ड कप में?
4: देखिए, श्रीचरणी इज अ वेरी गुड बॉलर, कंट्रोल से बॉल करती है, फ्लाइट करती है, एंड आपने WPL में भी अगर इनका परफॉर्मेंस देखा था तो उन्होंने ऑलमोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर थी, तो शी इज़ वेरी गुड। एंड आल्सो इन दीज लास्ट 4 मंथ्स दैट वी बीन टूरिंग साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, शी इज़ टेकन लॉट ऑफ विकेट्स, 2 विकेट्स, 3 विकेट्स इन एवरी सेकेंड इनिंग शी इज़ टेकन, सो शी इज़ वेरी गुड। बट वॉट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न इज द फॉर्म ऑफ दीप्ति शर्मा।
1: बिल्कुल सही, मैं इसी सवाल पर आ रहा था, स्ट्रगल कर रही है।
4: या शी हैज जस्ट टेकन इन 1 मैच 5 विकेट्स, इन रेस्ट ऑफ द मैचेस शी इज नॉट दैट ओल्ड दीप्ति शर्मा दैट वी नो हर टू बी, पर आज उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग करेगी। एंड बट आई हैव गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन श्रियंका पाटिल ऑल्सो, शी इज बोल्ड वेरी वेल इन WPL एंड ऑल्सो इन द प्रैक्टिस मैचेज दैट वी हैड इन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। So these 3 spinners we are looking at, And Arundhati, the fast bowler, also she's done well. So our bowling is quite good when we compare ourselves with Pakistan.
3: Right, since we're talking of Deepti Sharma abhi, Deepti Sharma just requires 5 more wickets to go past actually Thipacha Puttawong of Thailand to become the leading wicket taker in women's T20. Mona, aapke paas aa jaati hu is baat se ki a moment of pride, kyunki hum Indian women's cricket ke evolution ki baat kar rahe hain. Deepti Sharma today stands at accomplishing a feat where she could become the record holder in terms of the number of wickets. 5 more wickets to go and she becomes the highest wicket taker in women's T20 cricket.
1: Mona, is sawal ke jawab par aayenge. Caller hamare saath jud gaye hain. Ji, swagat hai karyakram mein aapka. Ji, namaste. Ji, bataein kya batana chahte hain aap. Ji, shukriya. जी हाँ, इस विश्व कप में भारत के सभी मैचों का प्रसारण हम आपके लिए लेकर आएंगे. आप इस मैच से जुड़ा क्या बताना चाहते हैं? जी हाँ, करोड़ों भारतीय प्रशंसक टीम इंडिया को शुभकामना देना चाहते हैं. जी मोना, दीप्ति शर्मा के बारे में आप बता रही थी.
2: जी बिल्कुल, आपने बात की रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़ी हैं और पर्सनल माइलस्टोन्स इतना ज़्यादा जब आप क्रिकेट खेलते हैं अक्रॉस द फॉर्मेट और ये T20 में खास तौर पे दीप्ति शर्मा का जो प्रदर्शन रहा है, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि उतना उस कॉन्फिडेंस में वो नहीं दिख रही हैं, उस लय में वो नहीं दिख रही जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी. लेकिन बड़े मैच की खिलाड़ी हैं और बैक ऑफ माइंड चाहे कितना भी बोले कि हमारा ध्यान नहीं रहता है पर्सनल माइलस्टोन पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ माइंड रहता ही है कि अभी इतने विकेट बाकी हैं. तो बड़े मैच की खिलाड़ी है, बड़ा टूर्नामेंट है और सही समय पर पीक करना उन्हें आता है. तो उम्मीद हम यही करते हैं कि न सिर्फ वो माइलस्टोन बल्कि इस टूर्नामेंट में भारत को बहुत डीप ले जाने में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.
1: वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भारती फुलमाली की एंट्री होती है प्लेइंग 11 में, क्या हम इस टूर्नामेंट में बैटिंग ऑर्डर में सफल देख सकते हैं? चूंकि एक ऐसी प्लेयर हैं जो किसी भी ऑर्डर पर आकर तेज तरार पारी खेल सकती हैं.
0: अगर मैं भारती की बात करूं तो ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया ए में जो उन्होंने खेला था उन्होंने नाबाद 50 प्लस स्कोर किया था एंड वो कंटिन्यूस करती हुई आ रही हैं. दैट्स व्हाई वो इस टीम के अंदर आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है. और उसके उनके अंदर एक खासियत और है कि उनके अंदर पेशेंस भी है. जैसे कि हम देखें, अगर कंपैरिजन करें शेफाली वर्मा और भारती का, तो शेफाली के पास उतना पेशेंस नहीं है जितना कि भारती के पास है. और मान सकते हैं कि पहला मैच खेल रही हैं, लेकिन पहला मैच हो सकता है उनका ज़िंदगी का मैच हो और वो इसी मैच से आगे भी आएं. तो मेरी तो यही उम्मीद है कि वो 50 प्लस स्कोर करें और हो सकता है कि जहाँ भी वो ओपनिंग या फर्स्ट डाउन आए तो वहाँ पर अपने आप को प्रूव करें.
3: Right, I'll come to you now, Colonel Bhupraj, and ask you, does India go in as heavy favourites in the game today?
4: Oh yes, we are heavy favourites and I'm hoping for a one-sided match.
3: One-sided, wow. Mona ji?
2: Hands down, बिल्कुल इंडिया फेवरेट है. और जैसे हम बार बार बात करें कि इस पाकिस्तान के लिए सब कुछ निर्भर करता है उनकी कैप्टन पर, वो आज कैसे खेलती है. और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि टूर्नामेंट से पहले मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि उनके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी हैं. काफ़ी कुछ कूल डिमेनर जो महेंद्र सिंह धोनी का है वो उसी तरह से कप्तानी में विश्वास रखती है. तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सफलता के मामले में धोनी की वो नक्शी कदम पर ना चले और आज बिल्कुल भारत फेवरेट रहे.
1: कर्नल भूप राज, आपसे समझना चाहेंगे, भारत और पाकिस्तान की टीम जब भी मैदान पर उतरती है और विश्व कप का जब मंच होता है, गहमा गहमी बहुत बढ़ जाती है. और हम देख भी रहे हैं कि पिछली बार जब दोनों टीमें पुरुष विश्व कप में खेली थी तो किस तरीके का माहौल था. यहाँ पर क्या इंटेंसिटी आप फील कर रहे हैं?
4: देखिए, इस बड़े मैच में थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है दोनों टीमों के लिए, बट लेटली अगर आप देखिए तो इंडिया बोथ मेंस एंड वेमेंस में बड़े आराम से जीत रहा है. तो वो जो टेंशन इंडियन प्लेयर्स में है वो थोड़ी सी कम होगी इस बार एंड मेरे ख्याल से हम लोग अच्छा खेलेंगे.
1: जी हाँ बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अच्छा खेलेंगे. वैशाली, क्विक आपसे टेक लेना चाहेंगे, भारतीय बल्लेबाज किस तरीके की शुरुआत की उम्मीद कर रहे होंगे। हमने शेफाली की बात की, स्मृति की बात की, हमने ये भी चर्चा की कि स्मृति का फॉर्म उनके साथ नहीं है, जो टीम दक्षिण अफ्रीका खेलने गई थी, जो इंग्लैंड में वो बल्लेबाजी करके आई हैं, लेकिन

0: सब जानते हैं वो बिग मैच प्लेयर है।
1: जी बिल्कुल, और मैं यही उम्मीद करती हूँ और बाकी फैंस भी यही उम्मीद करते होंगे कि जो पावर प्ले है उसका भरपूर फायदा उठाया जाए और जितने रन्स हम लूट सकते हैं उतने रन्स हम लूटे, हमारी टीम वो उसके बाद जब हमारी शेफाली वर्मा मारने को आती है ना तो वो रुकती नहीं है, ये हमने काफ़ी टाइम तक देखा है। और स्मृति मन्ना का जब बैट चलता है वो ग्लांस करती है, जिस तरह से वो स्लाइस करती है बैट को और उसके साथ साथ जैसे वो कवर ड्राइव लगाती है वो रुकनी नहीं चाहिए आज के मैच में।
0: हम सब उम्मीद करते हैं कि आज भारत रुकेगा नहीं। तो विश्लेषण, आंकड़ों और उम्मीदों का यह सफर यहीं थमता है, लेकिन असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। बर्मिंघम का मैदान तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस महामुकाबले पर टिकी हैं। भारत और पाकिस्तान की टक्कर में अब हर गेंद इतिहास लिख सकती है। वैशाली आपका, कर्नल भूपराज आपका और मोना आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: Thank you.
2: First ball 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: मैं आशीष चरंगू अपने साथी कमेंटेटर दर्पण तिकिया, स्कोरर रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप का 10वां संस्करण शुरू हो चुका है 12 जून से, और अब तक इस प्रतियोगिता के, इस विश्व कप के 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं और आज 6वां मुकाबला है, जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद भारत और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीमों के बीच शुरू होने वाला है एजबेस्टन बर्मिंगम पर। और इस मैच में टॉस जीता है भारत के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, और टॉस जीतकर जैसा कि तमाम खेल के जानकारी अनुमान लगा रहे थे कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा पहले वो बल्लेबाजी करने का निर्णय लेगा इस पिच पे, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ये उपयुक्त फिलहाल काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। और हरमनप्रीत कौर ने भी ठीक वैसे ही किया, टॉस जीतने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी करना पसंद किया, उसका फैसला किया। और जो 11 खिलाड़ी आज वो टीम में उतारे गए हैं वो हैं स्मृति मांधना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर जो कि टीम के कप्तान हैं, भारती फुलमली, ऋचा घोष टीम के विकेटकीपर, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्रीचरणी और शंका पाटिल। तो ये है भारतीय टीम, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो कप्तान हैं वो हैं फातिमा साना, मुनीवाली टीम के विकेटकीपर गुल फिरोजा, आयशा जफर, सायरा जबेन, नतालिया फरवेज, आलिया रियाज, रमीन शमीम, नाशरा संधु, सादिया इकबाल और तास्मिया रुबाब। तो ये है दोनों टीमों का लेखा जोखा। फिलहाल बीच मैदान पर भारत के दोनों ही प्रारंभिक बैटर्स स्मृति मांधना और शेफाली वर्मा बीच मैदान की तरफ अग्रसर होती हुई, और निश्चित रूप से यहाँ पर भारत के तमाम जो खेल शायकीन हैं, खेल के जानकार हैं या खेल प्रशंसक हैं, उनको यही उम्मीद होगी कि ये जोड़ी भारत को एक अच्छी शुरुआत दे। और जैसा कि हमने देखा भी है कि 2000
2: अभी आप सुन रहे थे आईसीसी वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम पाकिस्तान मैच का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल है। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को

0: दर्शाया गया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव परिवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव परिवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, विशाल प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां स्लोवाक शैली में पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिसमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है। 3 अन्य लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय नौसैनिक पोत शारदा ने श्रीलंका के कोलंबो की यात्रा पूरी कर ली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यात्रा के दौरान श्रीलंका की नौसेना के साथ कई पेशेवर प्रशिक्षण और खेल संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज और किशोरी कुमकुम मोहन ने स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओ ये जिन और किम जे डेओ को हराया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7:05 हुए हैं।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, सुनिए देश गाना।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम पाकिस्तान मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: Towards the stumps, she hurled it towards the stumps, I should say, and the ball did not hit the stumps, rather it hit Jemima. Before that, whilst Smriti Mandhana was taking the run, she had to go around the bowler. Fatima Sana, in order to try and field the ball, came in her way, which is interesting. It could spark some sort of debate. Anyhow, next delivery of the over, onto the body line, delivered on the shorter side of good length, allows Smriti to pull it towards the long leg fielder, where Sadia Iqbal moves towards her left, picks it up, hurls it back to the wicketkeeper. Whilst all that is done, a single has been taken, 2 overs done. 10 for 1, our team India.
2: तो कुल मिलाकर इस ओवर के दौरान मात्र 3 ही रन आए, और निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ से एक बढ़िया शुरुआत की जा सकती है। अब तक पहले दो ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं उन्होंने भारत के तेज तरार बैटर्स को, और एक विकेट बदले में हासिल कर लिया है, वो भी शेफाली वर्मा जैसी तेज तरार बैटर का। तो देखना यह है कि तीसरे ओवर में क्या कुछ हो पाता है। क्या सादिया इकबाल ही गेंदबाजी के क्रम को जारी रखेंगी, या फिर फातिमा साना वहाँ पर कोई गेंदबाजी में परिवर्तन करना पसंद करेंगी, देखना निश्चित रूप से काफ़ी दिलचस्प होगा। आज यास्तिका भाटिया को टीम में जगह नहीं मिली है, और उनकी जगह पर भारतीय फुलमली को टीम में रखा गया है। हालांकि यास्तिका अच्छा प्रदर्शन कर रही थी हाल फिलहाल में, लेकिन आज टीम में उनकी जगह नहीं बनी है। सादिया इकबाल गेंदबाजी के क्रम को जारी रखेंगी, बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज। ओवर द विकेट ये गेंद थोड़ा सा फ्लाइटेड ऑफ स्टंप की तरफ। स्मृति मंदाना ने फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को हल्के से पुश किया ऑफ साइड में, गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया बिना किसी रन के। तीसरा ओवर प्रगति पर, टॉस जीतकर पहले भारत बल्लेबाजी कर रहा है इस मुकाबले में। भारत का ये पहला मुकाबला है इस आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का, और पाकिस्तान के लिए भी ये पहला मुकाबला। आप अगली गेंद फ्लाइटेड, और इस बार इस गेंद को उठा करके खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, डाइव करके रोकने की कोशिश जरूर की थी वहां पर आलिया रियाज ने, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकते हुए सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: फील्डिंग में चूक, जहां पर शायद 2 रन हो सकते थे, 2 रन अतिरिक्त भारत के खाते में जोड़ते हुए 4 रनों के साथ भारत 14 एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई इस गेंद को फिर से गेंद की पिच के नज़दीक जाकर हल्के से पुश किया कवर क्षेत्र में, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद फील्ड होती हुई बिना किसी रन के। स्मृति मानधना से काफ़ी उम्मीदें हैं। यदि आप स्मृति मानधना को देखें तो एक शतक भी उनका टी20 मैचेस में अब तक नज़र आता है। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार खूबसूरती के साथ मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को प्लेस करते हुए गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: बेहतरीन अंदाज में फ्रंट फुट पे जाकर बिल्कुल गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर गैप को तलाशने में पूरी तरह से कामयाब रही इस अवसर पर स्मृति मानधना, और इस ओवर में अब तक 2 चौके वो लगा चुकी हैं। कुल मिलाकर 8 रन अब तक आ चुकी हैं। दो गेंदें अभी बाकी बची हैं सादिया के इस ओवर में, जबकि स्मृति का अपना व्यक्तिगत स्कोर इन 2 चौकों की मदद से फिलहाल दोहरे अंक में 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर। वो अगली गेंद, इस बार गेंद को पूरा सम्मान दिया, फ्रंट फुट पे जाकर गेंद को बल्ले के नीचे आकर के टकराने दिया, और गेंद को वहां पर फील्ड किया गया ऑफ साइड में बिना किसी रन के। अंतिम गेंद लेकर सादिया इकबाल एक बार फिर से तैयार। 30 वर्ष की उनकी उम्र, और ICC रैंकिंग में पिछले कुछ समय से शीर्ष स्थान पर हैं, और जैसा कि थोड़ी देर पहले दर्पण बता रहे थे कि अब वो दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी हैं। अगली गेंद को फिर से हल्के से ड्राइव किया था ऑफ साइड पे, लेकिन इस बार गेंद को फिर से 30 गज के दायरे के अंदर फील्ड किया गया। ओवर की समाप्ति हुई।
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
6: ली। जानिए आभा के बारे में। यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: So 18 for 1, half of the power play done, 3 overs done, 18 for 1 India at the loss of the wicket of Shefali Verma. And looks like Tasmia Rubab has now been summoned by Captain Fatima Sana. Tasmia Rubab, who's a left-arm seamer and a bit of an unknown quantity, because she's today playing only her third T20I, and she has played two matches before this, one in this year, the other one back in 2024. So she's a bit of an unknown quantity. Wears number 10 on her back. Runs into ball this one from over the wicket. Full length delivery. Jemima Rodrigues drives this one towards mid-on and runs down in the search of a single, which Smriti Mandhana thought was non-existent. And hence, Mandhana said no. She sent Jemima back from halfway down the pitch. Jemima makes it safely home. And after that, holds her hand up in apology. She had punched this one straight to mid-on, and Smriti Mandhana did not see the need to run. Rodrigues says that it was her fault. However, this shows a bit of desperation. Next delivery, she goes for a big shot and completely miscues it. And the catch has been put down. No! Takes it on the second attempt. Does Natalia Parvez and India lose their second wicket? This was delivered on the fuller side of good length. It was angling away from the right-hander.

0: Yet, she juggled it. She did not catch it on the first attempt. The ball popped out of her hand and she grabbed it on the second attempt. The score is 18 for 2 after 3.2 overs. The start for India has not been great.
1: निश्चित रूप से भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है टॉस जीतकर, जिस तरह की उम्मीद थी भारत को कि टॉस जीतने के बाद भारत एक विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगा और शुरुआत से ही कुछ तेज तर्रार अंदाज में रन बटोरेगा, लेकिन यहां पर भारत की शुरुआत तो ज़रूर अच्छी हुई। पहले ओवर की पहली गेंद पर शफाली वर्मा ने छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद उनका विकेट चटकाने में सादिया कामयाब रही थी पहले ही ओवर के दौरान। और इस समय एक और झटका भारत को चौथे ओवर के दौरान लग चुका है, चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर, जब जमीमा रॉड्रिक्स वापस पवेलियन लौट चुकी हैं। और कहना होगा कि अब यहां पर थोड़ी बहुत मुश्किलें भारत के लिए बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्या यहां से भारतीय पारी को संभालने में कामयाब रहेंगी हरमनप्रीत कौर? और हालांकि बल्लेबाजी के लिए अभी काफ़ी अच्छा खासा लाइनअप है भारत के पास, लेकिन फिलहाल जो तमाम दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो हरमनप्रीत कौर के पास है। हरमनप्रीत कौर जो कि एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी जो कि 10वां विश्व कप खेल रही हैं और साथ ही साथ 5वां ऐसा अवसर जबकि वो कप्तानी कर रही हैं T20 विश्व कप में। आते ही उन्होंने अपना खाता खोला और जो एक दबाव होता है पहले रन का, उसे अपने आप को उससे पूरी तरह से मुक्त कर लिया वहां पर तर्पण।
0: वेल आई हैव गॉट टू से दैट तास्मे अरुबा वाज अ बिट जेनरस, डिलीवर्ड अ हाफ वॉली ऑन हर पैड्स एंड देयरफॉर हरमनप्रीत कौर वाज एबल टू टक इट टुवर्ड्स स्क्वायर लेग एंड पिक अप दैट कंफर्टेबल सिंगल। सो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आउट देयर इन द मिडिल, रिमेंबर द इनिंग स्टार्टेड विद द फर्स्ट बॉल सिक्स। शेफाली वर्मा टुडे बिकेम द फर्स्ट बैटर टू हिट अ फर्स्ट बॉल सिक्स इन अ वर्ल्ड कप मैच इन वुमेन्स T20 क्रिकेट। बट हाउएवर आफ्टर दैट Pakistan have come back well. They have dismissed Shefali. They have dismissed Jemima. India are 19 for 2 after 3.5 overs. Two fielders allowed outside the 25-yard circle in the first 6 overs. Currently, they are deep backward square leg and deep backward point. Smriti Mandhana to face. This one is delivered on a length outside the off stump. And in a very measured manner, Smriti plays it away from the body but in a very controlled manner towards cover. She has looked steady. She has looked sturdy. She has hit a couple of boundaries already, but the important thing is that Smriti Mandhana has not looked rushed, unlike the other two batters who have gotten out. Next delivery from Tasmia delivers this one on a good length and it nips back in sharply. However, Mandhana had it covered. It finished near the middle end leg, 106 kilometers per hour, which means Tasmia is pretty brisk. However, Mandhana was able to tuck it towards the gap at square leg and pick up a comfortable single. Harmanpreet Kaur today is playing her 40th match in a T20 World Cup.

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय का जन्म 6 फरवरी सन 1913 को गुंद्रावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार में भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और IMA के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में

स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी सन 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल सन 1944 तक वे अस्थाई भर्ती स्टाफ में प्रमुख रहे।

फौजी साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई।

0: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुश्मन सेना भी उधर इसी इरादे से घात लगाए थी कि किस पल आक्रमण किया जाए। समय बहुत कम था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी, अब अंजाम कुछ भी हो युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहां ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और हुंकारे थी हमारे जाबाज रणबांकुरों की।

0: वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है।
1: फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला, अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है

ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। फौजी साथियों, भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह वे पहले महावीर चक्र विजेता बने।

फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट यानी शहनाई पर फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज़ कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगरू।
2: आती हो, ठहरो ठहरो।
1: पायला की पटवारी ताई।
2: जीते रहो मंगरू।
1: पटवारी जी घर में है क्या?
2: वो तो सवेरे ही मुखिया के संग जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे राव भूले, बहू कैसी है?
1: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
2: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिली।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
2: लो वो आ गए।
1: राम राम पटवारी जी, राम राम।
3: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए।
1: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
3: अच्छा आओ आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
1: जी पटवारी जी, भगवान ने कृपा की है, लड़की की शक्ल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
3: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
1: इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ। कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही।
3: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर जाऊंगा।
1: ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं हैं।
3: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता है ना, तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
3: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी?
3: भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना।
1: आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी का 13वां था।
3: हा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे पिताजी का 13वां था। और ये तुम्हारी
1: तारीख पड़ने वाली है समझो।
3: मेरा ख्याल है मंगरू कि इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी 3-4 एकड़ जमीन तो गिरवी डाल ही चुके होंगे।
1: तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चों को नाकों चने चबवा दूंगा।
3: अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
1: सुलह? अरे सुलह का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
3: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं।
1: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते हैं सब कुछ जायज है। बस आप तमाशा भर देखते जाओ।
3: वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा हूँ।
1: अरे ओ ओ हो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो हो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम।
3: अच्छा,
1: राम राम।
3: अच्छा राम राम भैया, राम राम।
1: ओ कल शाम को दावत में जरूर आना।
3: अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे।
4: I'm not.

0: अरे भाई बाजे वाले, जरा गाने की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू क्या खुशी हुई है खुशी।
1: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
0: अरे अरे अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे सुसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
1: अरे ओ फुलवा,
2: अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
3: काहे क्या हुआ भगवान?
2: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
3: हाँ भाई के आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
2: मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गए, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
3: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूलवा, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
2: सच अब तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भगवान है,
3: क्यों
2: देखो
3: नहीं?
2: ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है मेरी लली। मैं तो उसका नाम भाग दे रखूं।
3: अरे बावली मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
2: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ? भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
3: ओहो तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
2: हाँ? जाओ, जाओ,
4: मौसी,
1: मौसी। अरे मंगरू,
3: तो क्या बात है माधो?
1: अरे चौधरी जी आ गए।
3: चौधरी जी? हाँ? ओ, ओ, ओ, देख माधो तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
1: अच्छा मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ।
3: ठीक है
1: मैं भी आता हूँ।
5: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
3: बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़े सही वक्त में आया। आइए आइए बिना जी।
5: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
3: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने।

0: पता चला आप अब
1: मेरी रकम दे रहे हो ना?
0: जी जी वो
1: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
0: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे कि वो रुपए तो सब
1: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू, मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
0: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
1: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरहवा आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए और अब तुम्हारी बच्ची।
0: ओ चौधरी जी, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। धर्म से धर्म
1: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
0: चौधरी जी मालिक मालिक,
1: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा।
0: नहीं नहीं नहीं चौधरी जी, नहीं, मुझ पे दया कीजिए, दया कीजिए।
1: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
0: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। पटवारी जी, पटवारी जी।
2: भैया अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
1: जी 3,000।
2: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
1: जी आप?
2: हाँ हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
1: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी, आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं, राम राम, मैं चलता हूँ, जय राम जी की।
2: अच्छा भैया जय राम जी।
0: पटवारी जी आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
2: तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
0: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
2: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
0: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
2: और एक भूल तुमने और भी की है? जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
0: नहीं वो क्या पटवारी जी है?
2: देखो रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या
0: पर गलती उसी की पटवारी जी।
2: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो, और अब मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी।
0: तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी?
2: देखो
0: क्या करूँ,
2: रूप सिंह से समझौता करो भैया।
0: लेकिन
2: कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है। देखो तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा। है
0: ठीक ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी, और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा।
2: कौन से रुपए भाई?
0: वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे।
2: उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू।
0: काहे?
2: वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे।
0: मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो।
2: अच्छा ये लो मंगरू,
0: ये क्या कागज?
2: हाँ
0: ये कैसे कागज है, कैसे कागज है?
2: मंगरू अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर हैं मंगरू, कागज के जेवर जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ।
0: मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं।
2: अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है?
0: राष्ट्रीय
2: बचत पत्र है। ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे।
0: लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी?
2: क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है।
0: अच्छा, वो किस तरह?
2: वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है।
0: अच्छा।
2: हाँ, अब देखो तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है।
0: अच्छा।
2: कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं।
0: 11,000?
2: हाँ भाई,
0: सच सच कह रहे हो पटवारी जी?
2: हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ। हाँ। और रुपया मिल जाने के बाद? हाँ,
0: अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा। और
2: लेकिन अब फजूल खर्च मत करना।
0: अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। हाँ, जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा।
2: इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर।
3: अजी मैंने कहा, अजी देखिए तो पंडित जी आ गए हैं, जल्दी तो चलिए।
0: आ गए पंडित जी? हाँ, चलिए आइए पटवारी जी, आइए आइए।
2: चलो चलो।

कागज के जेवर, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।

0: लौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
3: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने

0: देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बॉबी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आंधी फिल्म का गाना। गीत गुलजार ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ में अभिमान फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस डी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। केदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू।

संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

0: सहारा।
1: बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता भारत।

0: आभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: स्वप्न झरे फूल से

0: लिखते रहे।
1: बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपा कली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर। 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांग लिया था अपने दामन में सितारों की तरह और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था। हमने माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का। फिर क्यों उदास हो तुम?

हमने सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें, ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

एक ऐसी कैफियत है दर्द और सुकून का, ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

आंखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है? क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल?

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

संदिल है वक्त, एक शातिर बाजीगर। वक्त मजमा लगाता है, खेल दिखाता है और फिर समेट कर अपना सरो सामा चल पड़ता है अगली मंजिल की तरफ। हम भोले भाले हैं जो सोचते हैं कि ये मजमा जारी रहेगा हमेशा, हमेशा गूंजते रहेंगे तराने।

0: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
1: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
0: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

0: फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन
1: दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके
0: फिल्म दर्द शकील बदायूनी नौशाद आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, फिल्में स्मृति भी हैं, फिल्में नॉस्टैल्जिया भी हैं। जब हम पुरानी फिल्मों को देखते हैं तो खो जाते हैं उस पुराने दौर में, मानो समय के स्केल पर कोई बटन दब गया हो और हम अतीत के किसी खांचे में लौट चले हों। ये है फिल्मों का जादू।

जैसे ही आपने इस गाने की झलक सुनी होगी, आपके जहन में कुछ ख्याल आए होंगे लता जी की आवाज के बारे में, संगीतकार मदन मोहन के बारे में और फिल्म मेरा साया के बारे में। जरा ठहरिए, हम अभी आपके साथ अतीत के इस कुहासे में थोड़ी देर और चहलकदमी करेंगे।

0: मुमकिन है कि इन दोनों गानों को सुनकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि या तो बातें मदन मोहन की होने वाली हैं या फिर फिल्म निर्देशक राज खोसला की। अब सवाल ये है कि आपका क्या किया जाए अंदाजा सही लगाने के लिए।
1: मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए।
0: दरअसल 9 जून को होता है जाने माने निर्देशक राज खोसला की याद का दिन, इसलिए आज हम पूरे एक घंटे राज खोसला के जीवन और उनके सिनेमा की पड़ताल करेंगे। होंगे कुछ दिलचस्प किस्से।
2: है अपना दिल तो आवारा,
0: कितनी कमाल की बात है कि राज खोसला की एक फिल्म थी सन 1966 में आई मेरा साया।

किस तरह से फिल्मी गाने बदलते वक्त के साथ प्रासंगिक बने रहते हैं और रूप बदल कर आते हैं, इसकी एक मिसाल ये है कि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में ये गाना रूप बदल कर आया। राज खोसला मनोरंजन के दायरे वाले सिनेमा की बड़ी हस्ती हैं। एक निर्देशक के तौर पर उनकी खासियत को रेखांकित कर दें, फिर आगे की बातें की जाएं। राज खोसला ऐसे निर्देशक हैं जिन्हें सस्पेंस बड़ा प्रिय था, इसलिए तो उन्होंने सीआईडी, वो कौन थी, मेरा साया और अनीता जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने डाकुओं की कहानी भी दमदार तरीके से पेश की, पर वो सामाजिक मुद्दों पर बात करते भी नजर आए। फिर चाहे दो रास्ते हो या फिर वो फिल्म जिसका नाम था क्या। आपको पता है कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के अभिनय वाली इस फिल्म के निर्देशक भी राज खोसला ही थे।

0: और ये सारी फिल्में उस जमाने की हैं जब एक तरफ राज कपूर सक्रिय थे, दूसरी तरफ देव आनंद, विजय आनंद, गुरुदत्त, बी आर चोपड़ा, महबूब खान, के आसिफ और बाकी तमाम दिग्गज निर्देशक। उनके बीच राज खोसला ने अगर बॉक्स ऑफिस पर लगातार राज किया तो इसका मतलब यह है कि इस निर्देशक को मनोरंजक सिनेमा की गहरी समझ थी। राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को पंजाब के राहौन में हुआ था। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तब माता पिता मुंबई आ गए थे। जाहिर है कि उनकी पढ़ाई मुंबई में हुई।
1: ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके, यह बॉम्बे मेरी जान।
0: राज खोसला